एफएम 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है, शक संपत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 38 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को

0: 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि।
2: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program.

0: नन्हा कार्यक्रम में अभी आपने सुना किशोरी अमोनकर, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा और साथियों को FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकाश किरण।
1: जिन प्रिय वचनों को मधुर स्वर में गा गा कर दैव शक्ति को संतुष्ट व प्रसन्न करते थे, वे सब सामवेद में संग्रहित है। इस वेद के मंत्रों के गायन में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता रहा है। कहते हैं कि इसी वेद से गांधर्व वेद का उद्भव हुआ, जिससे हमें संगीत शास्त्र की विभिन्न राग रागनियों का परिचय प्राप्त होता है। लीजिए प्रस्तुत है इस वेद के गीतात्मक कुछ मंत्र।
2: अगस्त्य यामी के द्वे द्वयो अगस्त्य पृष्ठ सोमा

कार्यक्रम प्रकाश किरण में अभी आप सुन रहे थे सामवेद के कुछ अंश, आलेख और वाचन सुरजीत कौर का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला, तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर हिमवान दंपति को सांत्वना दी। शोकाकुल हिमवान तथा मैना को ये ज्ञात नहीं था कि भ्रमवश सीता का वेश धारण करने के कारण शिव ने सती का त्याग किया था तथा सती ने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस कांड का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था अनुराधा पौडवाल और साथियों ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

से कुछ देर बाद यानी 6:50 पर हमारे श्रोता कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा गर्मियों में जुताई। वार्ताकार रहेंगे डॉक्टर एस के झा और 7 बजे आप आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का।

आप बस कर 31 मिनट पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा ब्रज में ठाकुर जी की ग्रीष्मकालीन सेवा। साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज लोकलहरी फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम। 8:30 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में, कार्यक्रम गीतांजलि के कुछ नगमों का।

9 बजे आप सुनेंगे वार्ता, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। वार्ताकार होंगी पूजा चतुर्वेदी। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। आलेख और वाचन शालिनी भटनागर का होगा।

बजकर 30 मिनट पर नन्हे मुन्ने का कार्यक्रम होगा पाल गोपाल। कार्यक्रम में चर्चा रहेगी गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क कैसे पूरा करें, साथ ही वार्ता सुनेंगे जानवरों की दुनिया, जंगल का राजा शेर और सुनेंगे बाल कहानी। कार्यक्रम बाल गोपाल में 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष होने के उपलक्ष्य में मुशायरा। प्रतिभागी होंगे मोहम्मद अशफाक समर, योगेश

55 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता से सीधे संवाद का कार्यक्रम। 11:30 पर आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत और 12:30 का समय रहेगा प्रजलोक गीत कार्यक्रम का। कलाकार सुनील दत्त चतुर्वेदी।

इन बजकर 15 मिनट पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे आनंद वल्लभ गोस्वामी की लिखी झलकी नशे का जहर, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की होगी। और 1:30 पर श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की होगी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: ऐसे समय में जब गर्मी का मौसम चल रहा है, हमारे खेत खाली हैं, तो ये उपयुक्त समय है कि हम अपने खेतों की उचित देखभाल करें ताकि अगली जो फसल है उसके लिए वो तैयार हो सके। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है गर्मी की जुताई का। तो ये क्यों आवश्यक है, इसको करने से आपको क्या लाभ होगा, इसके बारे में जो वैज्ञानिक तथ्य है वो उस पर प्रकाश फिर से डाल लें डॉक्टर SK झा साहब।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया OP सिंह जी आपने कि ये गर्मी की जुताई के बारे में किसान भाइयों को अक्सर हम लोग बताते ही रहते हैं और कई बार आप लोग जानते भी होंगे और करते भी होंगे, फिर भी आज दोहराने का अवसर मिला है तो मैं दोहरा रहा हूँ कि गर्मी की जुताई करने से कीटों, रोगों, खरपतवारों या भूमि में वायु संचार को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इन सब चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है, कीटों को भी, रोगों को भी, खरपतवारों को भी और भूमि के अंदर में वायु के संचार को भी। भूमि में आपके कीड़े छिपे होते हैं, उसके अंडे होते हैं, आपके खरपतवारों के बीज होंगे, फफूंद के बीज होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे जो बीमारियां फैलाते रहते हैं। और अगर आप गर्मी की जुताई करते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं तो सूर्य की तेज किरणों से ये नष्ट हो जाते हैं, भूमि के छिद्र खुल जाते हैं जिससे भूमि में जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। भूमि के निचली सतह पर पाए जाने वाले जो लाभदायक सूक्ष्म जीव की क्रियाएं वो तेज हो जाती हैं, कुछ तो हमारे मित्रवत भी हैं फफूंद सब। इसके परिणाम से क्या होता है कि भूमि में जीवांश पदार्थों की मात्रा एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसी के साथ पौधों को पोषक तत्वों एवं खनिज पदार्थों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। तो ये कुल मिलाकर के एक समेकित कार्य करता है गर्मी की जुताई, इसलिए ये आवश्यक है।
1: तो निश्चित तौर पर इसके लाभ तो है, लेकिन लाभ तभी मिलेंगे जब हम कोई भी काम उचित तरीके से करें। अगर उचित तरीके से नहीं करेंगे तो हो सकता है जितना लाभ हमें मिले उतना नहीं मिल पाएगा। तो अब गर्मी की जुताई आप करने जा रहे हैं, उसका तरीका क्या होना चाहिए जिससे आपको सही लाभ मिले, वो फिर से बता रहे हैं डॉक्टर झा।
2: हाँ, ये भी सही है कि अगर आप गर्मी की जुताई करते हैं तो उसका जो अनुमोदित तरीका है, जो यंत्र है, उसका इस्तेमाल करें। जैसे मिट्टी पलटने वाले हल के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसको हम मोल्ड बोर्ड प्लॉ कहते हैं। तो इससे यदि आप 15 सेंटीमीटर या 6 इंच या आधे फीट की गहराई तक गर्मी की जुताई करनी चाहिए। एक तो इस हल से देसी हल द्वारा जुताई न करें, क्योंकि इसके द्वारा मिट्टी पलटना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि यदि खेत में ढलान हो तो जुताई ढलान के विपरीत दिशा में करें।

0: रखनी चाहिए, जिससे वर्षा ऋतु में खेत से पानी या मिट्टी बहके न जाने पाए। गर्मी की जुताई रबी फसल की कटाई के बाद प्रायः मई के प्रथम सप्ताह में शुरू करते हुए जून के दूसरे सप्ताह के बीच करनी चाहिए। यानी कि आपको एक डेढ़ महीने का समय मई से लेके जून तक, आपको जून के दूसरे सप्ताह तक करनी चाहिए। जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि गर्मी की जुताई से मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाएं, न कि मिट्टी को आप भुरभुरा बना दें। ये आवश्यक है कि वो ढेले बने और ढेले पलट जाएं, इसलिए इसको मिट्टी पलटने वाले हल से ही आप गर्मी की जुताई करें।
1: तो किसान भाइयों, जो बात बताई गई है वो ये है कि जब आप गर्मी की जुताई कर रहे हैं तो दो चीजें विशेष कर ध्यान रखनी चाहिए, जिस पर डॉक्टर साहब ने विशेष बल दिया, वो है एक तो जुताई हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से ही करें, और दूसरे जुताई ऐसी करें जिससे खेत में ढीले बने, यानी मिट्टी भुरभुरी नहीं हो। उससे क्या होगा कि आपकी जमीन में वायु का प्रसार बढ़ेगा, जो हमारे हानिकारक कीड़े हैं वो धूप में मर जाएंगे और उसका सही जो लाभ हमको मिलना है वो हमें मिल पाएगा।
2: अभी आप कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, विषय था गर्मियों की जुताई। वार्ताकार थे डॉक्टर एस के झा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

ये सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म आराधना से। स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

समय आप आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

यस उदास और आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म अपने पराये में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।
1: मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण

0: एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। इस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
4: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। अब जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा कर

0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10 फीसदी का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
0: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
0: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
0: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश

माधुरी कार्यक्रम सुनबे बारे और ब्रज लोक लहरी कार्यक्रम सुनबे बारे हमारे सभी ब्रजवासीन को सवन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे आय जुरे सब ब्रज के वासी बैठे लाख चौरासी ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद और ब्रज वनिता सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद गोकुल चंद्रमा श्री कृष्ण ब्रज के अधिष्ठात्रा सरकार कृष्ण कन्हैया उनको बारंबार नमन वंदन करें। और आज की चर्चा का विषय है ब्रज में ठाकुर जी की ग्रीष्मकालीन सेवा। भैयाओ हमारे ब्रजमंडल में तो ग्रीष्म ही नहीं सब ऋतुन में ठाकुर जी को अनन्य लाड़ लड़ायो जाए। आओ गोपाल श्रृंगार बनाऊं अति सुगंध को करूं उबटनो पाछे शीतल जल सो जू डवाऊं, क्योंकि यहाँ कन्हैया समस्त ब्रजवासिन को लाडलो है, उनको कृष्ण है, उनको बाल स्वरूप है, बड़ी सुंदर सेवा हुए। और यह महीना में तो खूब खूब आनंद और आ रहे हो, ठाकुर जी के पूरे वर्ष भर के उत्सव यह महीना में देखवे को मिले। कहूं तो ठाकुर जी की चंदन सेवा है रही है, कहूं इत्र सेवा है रही है, कहूं खसके बंगला बनने, कहूं कुंज बनने ये, कहूं हटरी के दर्शन है रहे, कहूं तो ठाकुर जी के लाल पीरी हरी गुलाबी आसमानी घटान के दर्शन है रहे, बेलान के फूलन के बंगला ऐसे सुंदर सुंदर बंगला साफ बन रहे, ठाकुर जी के पंखा झले जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो कन्हैया के काजे कर रहे हैं, ब्रजवासी अपने काजे ना कर रहे, सतुआ को भोग लग रहे हो, आए भय आगंतुकन को पर्यटकन को ऐसा ध्यान रखो जा रहे हो, तो कहूं तो फालसेब के साफ शरबत मिल रहे, पेरल के शरबत मिल रहे, खस के शरबत मिल रहे। और हमारे ब्रजवासी भैया तो जो पर्यटक आ रहे हैं उनको ब्रजवासी बना रहे हैं। हम तो ऐसा अनुभव करें हमारे पूर्वज ब्रजमंडल में अखंड जो ब्रजवासी है ना वो श्री यमुना जी है, अखंड ब्रजवासी है वो महादेव बाबा है, अखंड ब्रजवासी है वो राधा रानी है, जो ब्रज में ही रहे और ब्रज में आनंद करामे। और गर्मी के दिनान में जब बात है रही है ग्रीष्मकालीन सेवा की, तो अतर गुलाब नीर अतर के गुलाब लग रहे, पर्दा लपटे उसीर त्रिविध समीर की झकोर लहवो करे। जब सुंदर सुंदर ठाकुर जी के फुब्बारे चले उनके दर्शन देखने को मिले, छूटत फुआरे होद भरे अति भारे सारे नानाविध चादर की धार बहवो करे। आह और तो और रंग जमे रागिन रहत सारंग की, जब ग्रीष्म समय आवे तो सारंग राग गवे गुणगान कहवो करे, ऐसे निज मंदिरन में विराजे बाल कृष्ण प्रभु ब्रजाधीश आठों प्रहर तरस लहवो करे।

अरे हमारे तो जो ब्रज के ब्रजवासी भैया हैं, खूब दर्शन करें, खूब आनंद लें और खूब चकाचकी साहब हो, सत्तू को भोग लग रहे हो, कहूं मोहनथार के दर्शन रहे, कहूं बादाम की बर्फी, कहूं साहब बढ़िया बढ़िया सुंदर गर्मी ते निजात पावे के सुंदर सुंदर दर्शन जो है रहे प्रसादी के रूप में हमारे भक्तन को, खूब गुलाब जल चांदी के होद में भर के खूब पर्यटन को छिड़का रहे हो, ऐसो आनंद जा ब्रजमंडल में छा रहे हो भैया, क्योंकि कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी है और फरमाइशी लोकगीत को कार्यक्रम है तो चर्चा तो ये है गई, हमारा ये पहला पत्र हमें मिलो है, गांव उस पार सो याद राम वीरेंद्र कुमार भोली मनीष काना कोमल लड्डू वैष्णवी प्रीति पिंकी ओमवती मनोज कुमार गौरी तौजी राम भगत जी राजो देवी और उनके सभी परिवारीजन, संग ही राजू लवानिया पंकज कुमार अर्पण खंडौली आगरा सो मथुरा आकाशवाणी के समस्त अधिकारी इनको कलाकार इनको भैया खूब खूब प्रणाम करें, इनको बहुत बहुत बधाई क्योंकि तो ब्रज को आनंद कछु और ही बरस रहे हो, आज आप सबकी श्रोतान की पसंद को सुनो ये ब्रजलोकगीत संवे स्वर में, अरी मेरो मारग रोक्यो या कृष्ण मुरारी ने।

माने अभी समरेश्वर में या बड़ी लोकगीत को अभी आपने आनंद लियो या गीत को सुनवा चाहे हो गांव माठ सौ शैलेंद्र प्रताप सिंह विनेश प्रताप सिंह और उनके सभी परिवारीजन संग ही हमारे श्रोता हैं डॉक्टर वीपी राय डॉक्टर रेखा राय द्वारकापुरी मथुरा डॉक्टर अनिल भाटी पुष्पांजलि उपवंसों डॉक्टर मुकेश चंद्रा सावित्री शर्मा यज्ञेश शर्मा गोवर्धन चौराहे मथुरा सौ डॉक्टर अभिषेक कुलश्रेष्ठ ग्रीन कैंपस हाथरस सौ और डॉक्टर विद्योत्तमा टाउनशिप मथुरा सौ संग ही हमारे अगले श्रोता हैं उमा शर्मा उर्मिला शर्मा नितिन सचिन राधिका शर्मा और धौली प्याऊ मथुरा सौ जो सब श्रोतान की यही इच्छा है कि वृंदावन की महिमा को दर्शन हमें कराओ। भैया एक बात आपको बताएं कि यह पावन पुरुषोत्तम मास में नीको लागत पुरुषोत्तम मास चाकी महिमा जगत बखानत करत भक्त सब जाकी आस। या समय सब भक्त वृंद जो है जितने भी भारतीय जो श्रोता दर्शन जो करवे आए हैं वो यही कह रहे हैं कि तीस दिना में हमें रोज के नित्य लीलान को दर्शन अगर ब्रजमादरी में है जाए तो बड़ी कृपा हो। ग्वाले ने कृष्ण दर्श सौट की एक जो ग्वालिन है वो श्याम सुंदर को दर्शन कर रही है और बेर बेर पनघट चली आवे सिर यमुना जल मटकी। श्री मदन मोहन जी को रूप सुधारस पीवत नैन भर घटकी और कृष्ण धास धन धन यह ग्वालिन लोक लाज कुल पटकी। ये दर्शन करवे के काज है न कोई ट्रेन की समस्या उन्हें है रही है न गर्मी की कोई समस्या है रही है वृंदावन के दर्शन करवे ब्रजभूमि के दर्शन करवे काज है। नीको लगे हमें वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे सुने या ब्रज लोकगीत को आप सब श्रोतान की पसंद पे।

सुना सक्सेना के स्वर में यह लोकगीत अवैया आपने सुनियो या गीत को सुनवो चाहा हो। पिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ सो रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल देवांगन और उनके सभी परिवारीजन, संग ही ज्योति, मन्नत, भारत, कमल और उनके सभी परिवारीजन, साथ ही हमारे श्रोता है श्याम कमल और उनके सभी परिवारीजन, और कैलाश नगर मथुरा सो सोनू गोला और उनके सभी मित्रगण, संग ही चकला बाजार पंजाब सो पप्पू राजा, संगीता, पप्पू महक, सुनीता आरजू, हसमुख लाल, बुलबुल, संजीव और उनके सभी मित्रगण, संग ही हमारे श्रोता मित्र हैं भाटा पारा सो हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल और उनके परिवारजन, संग ही हमारे जो श्रोता हैं गांव जाबरा सो अंजलि चौधरी, मयंक, टिम्पल चौधरी, देव चौधरी, हिमांशी, अनाया और परिवार के सभी सदस्यगण, और सुनबा में आपको ये अगलो ब्रज लोकगीत आप श्रवण की पसंद को संवेश स्वर में माधुरी शर्मा और रमेश रावत।

भाई आपने आनंद लियो या युगल गीत को माधुरी शर्मा और रमेश रावत के स्वर में या गीत को सुनना चाहो हो, चरीपुरा हाथरसों सत्यवीर सिंह वीरा सिंह राजेश आरती रजनीश राखी तुलसी राहुल वर्षिता करवित और कनिष्का गौतम और उनके सभी परिवारीजन और सुने कार्यक्रम में यगलो गीत।

यह गीत कुसुनव चाहो हो पटेल नगर सो डॉक्टर रमेश कुमार गीता रानी गगनदीप आरजू और गुड्डू संग ही हमारे ये श्रोता हैं देवशंकर अजय देव तुषार मास्टर अल कबीर और उनके परिवारजन साथ ही ततरंगी सो भागवत वर्मा शांति लीलावती विनीता और उनके सभी परिवारजन रीता राजन अग्रवाल मंडी रामदास मथुरा सो और ये श्रोता हैं हमारे छत्तीसगढ़ सो कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी जोगेशपुरी ट्विंकल मीनाक्षी निशा तुलसी दिशा गोस्वामी और उनके सभी परिवारजन। तो भैया मदन मोहन ब्रजवासी के गाए या लोकगीत के संग ही आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी फरमाइशी लोकगीत को कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। सब श्रोतान को हमारी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी में, ब्रज लोक लहरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया।

0: हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
1: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया

0: कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक

0: चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गिब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
10: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
9: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
10: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
9: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
10: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
11: आगे सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि के कुछ नगमे। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म दिल से, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण की।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: संगीत का आनंद इस समय आप आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से ले रहे हैं।

अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू को भी आपने सुना फिल्म आशिकी में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

0: लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम और साथियों के गाए फिल्म मैंने प्यार किया के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं वार्ता। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वार्ताकार हैं पूजा चतुर्वेदी।
1: हम सभी जानते हैं कि जीवन अनमोल है और जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, 84 लाख योनियों का चक्कर पूरा करने के बाद ही दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो आप सिर्फ इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। तो श्रोताओं, आज हम आप के समक्ष एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि हमारे और आपके बीच एक बहुत आम सी बात है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है, और उसका हमारे शरीर पर या हमारे जीवन पर क्या दुष्प्रभाव होता है यह जानते हुए भी हम उसका सेवन करने से बच नहीं पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू की। ये वो जहर है जो कि बाजार में वार्निंग के साथ खुलेआम बिकता है। इसके सेवन से होने वाली समस्याओं, बीमारियों को भली भांति जानते हुए भी हम इसके सेवन से बच नहीं पाते हैं। आमतौर पर यदि हम देखें तो हर दूसरा व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो तंबाकू के सेवन से होने वाली प्रमुख बीमारी कैंसर केवल उस व्यक्ति के जीवन को संकट में नहीं डालती जो उसका सेवन कर रहा है, बल्कि पूरे परिवार के जीवन को भी प्रभावित करती है और परिवार को हाशिए पर लाकर खड़ा कर देती है। आजकल आप अपने आसपास यदि देखेंगे तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। सामाजिक स्तर पर यदि देखा जाए तो सरकारों, कुछ एनजीओ और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा तंबाकू के सेवन को रोकने एवं जागरूकता बढ़ाने के बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से एक है आज का दिन यानी 31 मई, जिसे हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाता है। तंबाकू के सेवन से कम 15 प्रकार के कैंसर, हृदय रोग और विभिन्न फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना, हुक्का और सिगार। सिगरेट पीना तंबाकू के सेवन का सबसे आम तरीका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में दुनिया के 12% धूम्रपान करने वाले लोग रहते हैं। भारत में हर साल 10 लाख से अधिक लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण मरते हैं। इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज हम आपको तंबाकू के सेवन से होने वाली 5 गंभीर बीमारियों के बारे में बताते हैं। सिगरेट पीना फेफड़ों के कैंसर का सबसे आम कारण है। विश्व में फेफड़ों के कैंसर से होने वाली 87% मौतें तंबाकू के सेवन से के कारण होती हैं। तंबाकू का सेवन इस जानलेवा बीमारी का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। मुंह के कैंसर के 90% मरीज तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग तंबाकू का सेवन धुआं रहित तरीके से करते हैं। ये लोग

तंबाकू को दांतों पर रखकर चबाते हैं। यह मुंह के कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। इससे गले के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों की तुलना में दिल का दौरा पड़ने की संभावना लगभग दोगुनी होती है। सिगरेट में निकोटीन नामक पदार्थ होता है। निकोटीन शरीर के रक्तचाप को बढ़ाता है और हृदय गति तेज हो जाती है। हृदय रोग से होने वाली 5 में से एक मौत का कारण तंबाकू का धूम्रपान होता है। COPD एक दीर्घकालीन श्वसन संबंधी बीमारी है जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इन रोगियों को सीढ़ियां चढ़ने, दौड़ने, जॉगिंग करने या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने में परेशानी होती है। COPD के कारण दीर्घकालीन विकलांगता या असमय मृत्यु हो सकती है। इस बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक तंबाकू धूम्रपान है। COPD के 80% मामले तंबाकू धूम्रपान के कारण होते हैं। तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और तंबाकू की खपत को कम करने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस का इतिहास 1987 का है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करने के लिए समर्पित एक दिन का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस दिन सरकारें, गैर सरकारी संगठन और व्यक्ति मजबूत तंबाकू नियंत्रण उपायों की वकालत करने के लिए एक साथ आते हैं, जैसे कि तंबाकू उत्पादों पर उच्च कर, धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थान और तंबाकू विज्ञापन पर प्रतिबंध, तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर विश्व तंबाकू विरोधी दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और धूम्रपान के कारण होने वाली लाखों समय से पहले होने वाली मौतों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंबाकू का उपयोग सदियों से एक प्रचलित आदत रही है, लेकिन स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। तंबाकू का उपयोग न केवल धूम्रपान करने वालों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह उनके आसपास के लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करता है। बच्चे और धूम्रपान न करने वाले वयस्क जो नियमित रूप से दूसरे हाथ से धूम्रपान के संपर्क में आते हैं, उनमें श्वसन संबंधी बीमारियों और हृदय रोग के विकास का खतरा बढ़ जाता है। इन ज्ञात खतरों के बावजूद कई व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपयोग करना जारी रखते हैं। धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों दोनों को समान रूप से तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए और पूरी तरह से जोखिम जोड़ने या उससे बचने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा धूम्रपान प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे व्यक्ति संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। धूम्रपान करने वाली गर्भवती महिलाओं को उनके शिशुओं में समय से पहले और जन्म के समय कम वजन जैसी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर तंबाकू के उपयोग के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता है। व्यक्तियों को इन जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए और अपने स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए धूम्रपान छोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। धूम्रपान के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने और छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए सहायता प्रदान करने के निरंतर प्रयास भविष्य में तंबाकू के उपयोग को और कम करने में महत्वपूर्ण होंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है। 2026 में जब हम इस महत्वपूर्ण दिन को मना रहे हैं, तो संदेश स्पष्ट है, तंबाकू को न कहना जीवन को हाँ कहना है। तंबाकू के सेवन के तात्कालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साथ ही लोगों को इसे छोड़ने के लिए व्यवहारिक रणनीतियों से सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह दोहरा दृष्टिकोण इस बात को स्वीकार करता है

कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को व्यसन से मुक्ति पाने के लिए ठोस सहायता की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू महामारी की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की। यह वार्षिक अभियान तंबाकू के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम

तलाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। श्रोताओं, अब हम अपने देश भारत पर बढ़ते तंबाकू के बोझ पर बात करते हैं। वैश्विक तंबाकू सेवन में भारत का हिस्सा अनुपातहीन रूप से अधिक है। 267 मिलियन से अधिक तंबाकू उपयोगकर्ताओं के साथ देश विश्व के कुल तंबाकू सेवन का लगभग 12% हिस्सा है। भारत की चुनौती को विशिष्ट रूप से जटिल बनाने वाला कारक गुटखा, खैनी और पान जैसे धुआं रहित तंबाकू उत्पादों का व्यापक उपयोग है, जो विभिन्न आयु वर्ग और क्षेत्रों में सांस्कृतिक और सामाजिक आदतों में गहराई से समाहित है। भारत में पहले से ही दुनिया में मुंह के कैंसर की दर सबसे अधिक है, जिसका मुख्य कारण बिना धुएं वाला तंबाकू है। इसके अलावा तंबाकू का सेवन टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन को काफी खराब कर देता है, जो पहले से ही 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रभावित कर रहा है। धूम्रपान करने वालों को मधुमेह होने की संभावना 30-40% अधिक होती है, और जिन लोगों को पहले से ही मधुमेह है उनमें तंबाकू इंसुलिन संवेदनशीलता को कम करता है और जटिलताओं को बढ़ाता है। तो श्रोताओं, अभी तक तो हमने बात की तंबाकू से होने वाले खतरों की, बीमारियों की, जोखिमों की, तंबाकू के कारण होने वाली अस्मय मृत्यु और एवं परिवार पर होने वाले प्रभाव एवं संकट की। श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कि इसको छोड़ने के क्या क्या फायदे हैं। यह एक सशक्त करने वाला सच है। जैसे ही आप धूम्रपान छोड़ते हैं, आपका शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक होने की प्रक्रिया बेहद उत्साहजनक है। 20 मिनट के भीतर आपकी हृदय गति और रक्तचाप स्वस्थ स्तर पर आ जाते हैं। 12 घंटे बाद आपके रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य हो जाता है, जिससे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार होता है। 2-12 सप्ताह के भीतर रक्त संचार में सुधार होता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे शारीरिक गतिविधि करना आसान हो जाता है। 1 साल बाद आपके हृदय रोग का खतरा धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की तुलना में आधा हो जाता है और इसका असर दिखने लगता है। 5-15 वर्षों के बाद स्ट्रोक का खतरा धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति के बराबर हो जाता है। समय के साथ त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और उसकी लोच बढ़ जाती है। बाल मजबूत बने रहते हैं और मसूड़ों की बीमारी और त्वचा की चमक फीकी पड़ने जैसी दीर्घकालीन समस्याओं की संभावना काफी कम हो जाती है। श्रोताओं, ये तो बात रही तंबाकू छोड़ने हमारे शरीर पर होने वाले कुछ बदलावों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि तंबाकू को छोड़ने वाले कुछ प्रयासों के बारे में। तंबाकू छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। सही सोच, व्यवहारिक रणनीतियों और चिकित्सीय सहायता के संयोजन के से हर साल लाखों लोग सफल होते हैं। सबसे कारगर तरीका कोई एक उपाय नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव, सहयोग प्रणाली और निरंतर प्रयास का मिश्रण है। उन स्थितियों, भावनाओं या दिनचर्या पर ध्यान दें जो आपको तंबाकू की तलब जगाती है, जैसे तनाव, ऊब या सामाजिक परिवेश। एक बार जब आप इन पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आप स्वचालित प्रतिक्रिया देने के बजाय अलग तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। धूम्रपान की जगह सकारात्मक गतिविधियों को अपनाएं जो उसी जरूरत को पूरा करती हो। उदाहरण के लिए, तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लेना, व्यायाम करना या ध्यान करना सीखें, और सामाजिक परिस्थितियों में आत्मविश्वास से प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अभ्यास करें। साथ ही सहायक लोगों के साथ रहें। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हानिकारक तंबाकू रसायनों के बिना नियंत्रित मात्रा में निकोटीन प्रदान करती है। इससे निकोटीन छोड़ने के लक्षण और तलब कम होती है, जिससे धूम्रपान छोड़ना आसान हो जाता है। धूम्रपान छोड़ने में सफल होने वाले कई लोगों के लिए दोबारा उसी स्थिति में लौटना आम बात है, और यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हर प्रयास आपको अपने ट्रिगर्स को बेहतर ढंग से समझने और अगले प्रयास के लिए अपनी मुकाबला करने की रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद करता है।

0: तया की बजाय निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करें। किसी चीज को छोड़ना एक यात्रा है, कोई एक बार की घटना नहीं। असफलताओं के बावजूद लगातार बने रहना और प्रतिबद्ध रहना ही दीर्घकालीन सफलता की ओर ले जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता विश्व तंबाकू निषेध दिवस। वार्ताकार थी पूजा चतुर्वेदी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं, जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सुशील जी।
2: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
3: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में, बहुत पहले से ये पेंडिंग पड़ा था, पिछली सरकारें लाना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं ले पाई। दूसरा एक वैश्विक, एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था, बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर, जैसे मैंने कहा कोविड-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से स्पीका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को देखते हुए बनाया गया, खासतौर से चाइना को कैसे कंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको कैसे लेके जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। हमेशा भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है, जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी

0: का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तरह की बात है। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं उसमें एआई का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि एआई से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है। जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है इंडिया का और करीब 10% के आसपास का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से एआई को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जिससे ना केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
1: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के, आपने एआई की बात की, पढ़ाई को लेकर के, ये क्या क्या चेंजेस हुए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लगभग 500 के आसपास जो है नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विश्वविद्यालय हैं। एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में वहां तक दूर दराज तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की। किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेस वे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है, मुंबई में दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी, खासतौर पर सीमा के क्षेत्रों में। जिन चुनौतियों की आपने चर्चा की उसमें बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले गलवान हुआ था, तो इस नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
0: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल आपकी, जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी है, एक्सप्रेसवेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे ना केवल एक्सप्रेसवेज बल्कि जो टर्शरी रोड्स हैं जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी बनती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेसवे है वो एनएचएआई बना रहा है, अभी कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं। बहुत सारे आपने देखा, एप्पल का प्लांट इंडिया में आया है, सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके नोएडा में लगा हुआ है, इसी तरीके के अन्य क्षेत्रों में एआई को लेके भारत की जो कंपनियां, अग्रणी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं होगा अच्छा तब तक इन्वेस्टर जो है किसी भी उसको बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी बुलिश रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम हो।
1: जी, और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है। और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उसके अंदर जो है वो बन चुके हैं। हर घर जल की अगर बात करें 15 करोड़ से ज्यादा देश भर में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो एक बहुत गेम चेंजर योजना थी वो पीएम आवास योजना भी, 4 करोड़ से ज्यादा घर उसके तहत जो है वो पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं। मुद्रा योजना के तहत जो है 50 करोड़ से ऊपर का लोन दिया जा चुका है। तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन अंत में जो मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि देश के युवा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई, सरकार ने शिक्षा नीति में पूरी तरीके से बदलाव करने की कोशिश की, युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला?
0: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप को लेके, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं

0: कहीं एक जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ना केवल जॉब मार्केट, सारे भी डोमेन्स को डिसरप्ट कर रहा है। खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जुड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है आपने, देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स है एमएसएमई को लेके कि कोलैटरल फ्री लोन कैसे देना है, स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स है जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य है, तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
1: जी बीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कार्यक्रम आज के मेहमान आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से आकाशवाणी लखनऊ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी आप कार्यक्रम को सुन सकते हैं। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज सुनिएगा श्री सुनील कुमार राय, पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ परिक्षेत्र से सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
1: पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान सर्वोपरि है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जागरूक हैं। पर्यावरण के प्रति महिलाएं अपनी दैनिक दिनचर्या में जरा सा सुधार कर एक अहम मिसाल साबित कर सकती हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति कुछ जागरूक महिलाओं का कहना है कि हम छोटी छोटी आदतों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि हम घर पर हैं तो घर के सभी लाइट्स और उपकरणों को ऑफ करके, जो कि आपके काम नहीं आ रहे हो, इसकी मदद से आप करीब 10 से 40 प्रतिशत तक बिजली की खपत बचा सकते हैं। पीने के पानी का उतना ही इस्तेमाल करें जितने की आपको वास्तव में जरूरत हो, ताकि उसे फेंकना ना पड़े। अपने फ्रिज का दरवाजा ज्यादा देर तक खुला ना रखें। ईंधन बचाने के लिए अपने वाहनों के टायरों में हवा का दबाव उचित मात्रा में रखें। घर से कपड़े का बैग लेकर चलें और खरीदारी के समय ज्यादा प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से बचें। गर्मियों में हर वक्त एयर कंडीशनर चलाने की बजाय हल्के कपड़े पहने और पंखे का इस्तेमाल करें। ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को कम करें, कार पुल का इस्तेमाल करें। पैदल चलें या बाइक से, इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और साइकिल से तो बिल्कुल भी नहीं। लोगों को जागरूक करें, पूरे घर के बल्ब बदलकर साधारण बल्बों की जगह CFL का इस्तेमाल करें। इससे आप 3 से 5 गुना बिजली बचा सकते हैं। स्थानीय तौर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का अधिक इस्तेमाल करें और लोगों को प्रोत्साहित करें। यह जागरूकता अवश्य पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका प्रदान करेगी। घर के उपयोग में आने वाले कचरे पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे घर से निकलने वाले कचरे में रोजमर्रा की कई चीजें दिखाई देती हैं। कागज, प्लास्टिक और कांच एवं किचन से निकलने वाला सब्जी भाजी का कचरा। इनमें से जो कचरा कबाड़ी वाले को देना है वह उसे देकर कागज, कांच और धातु से बनी चीजें रिसाइकल की जा सकती हैं। प्लास्टिक की थैलियां शहरों में ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। किसी भी पुरानी चीज को फेंकने के बजाय उसका दूसरा इस्तेमाल करने की सोचे। बिजली के बिल में कटौती करने की सोचे। हमारे आसपास की हवा, पानी और वातावरण के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। साल भर में फैलने वाली गड़बड़ियां दूर करने के लिए साल भर की अपनी आदतों में थोड़ा सुधार जरूरी है। हमारे छोटे छोटे काम साल भर चलते रहेंगे तो पर्यावरण ठीक रहेगा। पर्यावरण की हालत कैसी है और हम पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, यह सोचना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हम पाते हैं कि आज मानवता के सामने पर्यावरण प्रदूषण का एक अत्यंत कष्टकारक खतरा मंडरा रहा है। हमें अपने शहरों और गांवों को स्वच्छ और हरे भरे

0: बनाने हेतु अधिक से अधिक वनस्पति लगाने और दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाने की अत्यंत आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम हमारे समाज को भी इस अनूठे कार्य की शुरुआत करने का संकल्प दिलाएं। अगर वृक्षों का पतन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा तो देश के सामने संकट प्रकट हो जाएगा। स्थिति इतनी अत्यंत भयावह हो जाएगी कि हम असफल हुए तो आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति विध्वंस परिणाम भुगतने को बाध्य होना पड़ेगा। क्या हम अपनी संतान को उन कार्यों के लिए प्रदूषण के परिणामों को भुगतने हेतु अनुमति दे सकते हैं जिनके लिए हम खुद उत्तरदायी हैं?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। आलेख और वाचन शालिनी भटनागर का था। आलेख और वाचन था शालिनी भटनागर का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल गोपाल। पूनम यादव की है।

बच्चों जय हिंद। जय हिंद बच्चों, आप सबको भी। प्यारे बच्चों, गर्मियों का जोर दिन रोज बढ़ता जा रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि दिन में तो कहीं निकलने का भी मन नहीं करता। और तुम लोगों की तो गर्मियों की छुट्टियां भी हो गई हैं। बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों में कोई तो अपने रिश्तेदारों के घर जाता है, तो कोई कहीं ठंडी जगह या धार्मिक जगह पर घूमना पसंद करता है। लेकिन बच्चों, गर्मियों की छुट्टी हो या हो बरसात, लेकिन हम अपना ये कार्यक्रम जिसका नाम है बाल गोपाल, आपके लिए लाना नहीं भूलते हैं, और जिसको लेकर आई हैं आपकी अपनी पूनम दीदी। बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, ज्यादातर बच्चे तो घूमने चले भी गए हैं, क्योंकि बच्चे ही तो छुट्टियों का फुल आनंद लेते हैं। बच्चों, स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई थोड़ी बंद हुई है। स्कूल बंद होने से पहले आपको क्या मिलता है? हॉलीडे होमवर्क, और होमवर्क मिला है तो उसे पूरा करना भी है। बच्चों, आपके होमवर्क की चिंता आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को होती है। बच्चों का होमवर्क जल्दी कैसे हो, बच्चे होमवर्क की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको इसी विषय पर बताएंगे कि गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल का होमवर्क कैसे पूरा करें। बच्चों, स्कूल बंद और छुट्टियां शुरू, लेकिन ये छुट्टियां केवल नाम मात्र की होती हैं, क्योंकि बच्चों को हॉलीडे होमवर्क ही इतना सारा मिल जाता है कि वो सारी छुट्टियों में बस काम करते ही रह जाते हैं और टेंशन के मारे छुट्टियां भी एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन बच्चों, घबराओ नहीं, हम कुछ आसान टिप्स आपको बताएंगे जिनके जरिए आपका होमवर्क आसानी से हो जाएगा और तुम लोग छुट्टियों का आनंद भी ले सकोगे। सबसे पहले अपने होमवर्क का एक शेड्यूल बनाएं और देखें कि होमवर्क कितना है, और फिर उसका विभाजन करें कि हमें रोज कितना काम करना है। बच्चों, काम करने का तरीका और समय ऐसा बनाएं जिससे आपकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है वो भी आसान रहे। एक एक सब्जेक्ट का काम करें, सारा काम एक साथ फैलाकर ना बैठें। बच्चों, सारा काम एक साथ फैलाकर बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा रह गया और कौन सा कर लिया। काम करने में गैप बनाएं जिससे आपको बोरियत भी ना हो। बच्चे जब होमवर्क करें तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनके साथ बैठें, जिससे वे खुद को अकेला महसूस ना करें। बच्चों के साथ ऐसा रूटीन बनाएं कि सब छुट्टियों में एक साथ पढ़ें, खेलें, साथ साथ बैठें, खाएं पिएं, बच्चों की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखें और उनकी आगे की पढ़ाई की चर्चा करें। बच्चों को ज्यादा टाइम टेबल में ना बांधें, बिना किसी बंधन के बच्चों के साथ समय बिताएं। उन्हें होमवर्क करने के लिए किसी प्रकार का लालच न दें, क्योंकि लालच से बच्चों को बुरी आदत पड़ जाती है जो आगे चलकर गलत होती है। बच्चों का होमवर्क साथ में बैठकर समाप्त कराएं ताकि वो भी उसे मन लगाकर करें। और बच्चों, एक

0: विषय का काम निपटाएं, उसके बाद दूसरा शुरू करें ताकि होमवर्क जल्दी और आसानी से पूरा हो सके। बच्चों, आपको भी ध्यान में रखना है कि पहले स्कूल का काम और बाद में कहीं जाना, घूमना फिरना। और अगर बिना काम पूरा किए कहीं चले गए तो आपका भी मन नहीं लगेगा और आपको यही टेंशन लगेगी कि कब घर पहुंचेंगे, कब होमवर्क करेंगे, फिर स्कूल खुल जाएंगे, ये सारी छुट्टियों का मजा खराब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जानकारी दी हमने आपको गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क कैसे पूरा करें इस विषय पर। बच्चों, जब बातें गर्मियों की हो रही हैं, तो आपको सुनवाते हैं एक बाल कहानी। गर्मियों का मौसम सुना रही हैं संतोष देवी।
1: पीयूष अपनी माँ के साथ रोजाना सुबह विद्यालय जाता था। परीक्षाओं के बाद माँ उसे रोजाना स्कूल छोड़ने जाती। आज जब वह घर से बाहर निकला तो बाहर की गर्मी को देखकर वह डर गया। आज तो सूरज दादा थोड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। पीयूष चिलचिलाती धूप को देखकर घबरा गया। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, मैं तो आज स्कूल नहीं जाऊँगा, पीयूष घबराते हुए बोला। क्यों, क्या हुआ पीयूष, माँ ने पीयूष से प्रश्न किया। माँ देखो बाहर कितनी गर्मी है, मेरा तो शरीर जल सा रहा है, पीयूष ने आंखों को बंद करते हुए कहा। माँ बोली, बेटा अब तो गर्मी का मौसम ही आएगा, पीयूष थोड़ा झुंझलाते हुए असहमति के साथ बोला। यह गर्मी का मौसम क्यों आता है, माँ ने जब पीयूष की इस बात को सुना तो उसे समझाते हुए बोली, बेटा सर्दी के बाद सदैव ही गर्मी का मौसम आता है। अरे नहीं माँ, मेरा मतलब है यह गर्मियाँ आती क्यों हैं, माँ बोली, बेटे तुम्हें पता नहीं है यह ऋतुएं हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए आती हैं। अरे माँ, इन ऋतुओं के आने से कौन सा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, यह गर्मी की ऋतु तो मुझे और परेशान करती है, माँ बोली, बेटा पीयूष यदि ऋतुएं समय पर ना आएं तो हमें बीमारियों और महामारियों का सामना करना पड़ सकता है, और तुम्हें एक बात बताऊं, इन ऋतुओं के चक्र के साथ ही प्रकृति और जीवन का संतुलन बना रहता है, हर ऋतु का अपना विशेष महत्व और सौंदर्य है। नहीं माँ, मैं इसे नहीं मानता, इस बात पर पीयूष की माँ बहुत हंसी और बोली, तुम नहीं जानते हमारी भारतीय संस्कृति में तो हमारे जीवन शैली से इन ऋतुओं का अपना महत्व जुड़ा है, तुम नहीं जानते अभी बसंत ऋतु में बसंत पंचमी और होली का त्यौहार आया था, उससे पहले सर्दियों में कितनी ठंड रही थी, सर्दियों से पहले हम लोगों ने दशहरा और दिवाली के त्यौहार भी तो मनाए थे, वर्षा ऋतु में भी तो तुम कृष्ण कन्हैया के त्यौहार को मनाते हो, साथ ही राखी का त्यौहार मनाते हो, अब बेटा बसंत के बाद गर्मी की ऋतु आती है, इससे परेशान तो सभी होते हैं लेकिन यह ऋतु हमारे लिए बहुत लाभदायक है, पीयूष बोला, कौन सा इससे हमें फायदा होता है, मुझे नहीं लगता है गर्मी सिर्फ बीमारियों का पिटारा लेकर आती है, जब देखो किसी को उल्टी हो जाती है तो किसी को दस्त हो जाते हैं, किसी के शरीर में पानी कम हो जाता है तो बहुत से बच्चे तो चक्कर खाकर गिर जाते हैं, यह गर्मी मुझे नहीं अच्छी लगती, माँ पीयूष की बात पर फिर हंसी, तब उन्होंने कहा, बेटा गर्मी के बहुत फायदे हैं, गर्मी को सहन करना भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, वह कैसे माँ, पीयूष ने प्रश्न किया। पीयूष तुम जानते हो सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है और इनके द्वारा हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ लेकिन सिर्फ एक हड्डियां मजबूत होने से गर्मी अच्छी नहीं होती माँ, माँ फिर हंसी और उसे कहा, पीयूष तुम्हें पता है गर्मियों में दिन बड़े होते हैं या रात, पीयूष ने तपाक से जवाब दिया, माँ दिन बड़े होते हैं, माँ फिर हंसी और पीयूष की ठोड़ी पर हाथ रखकर बोली, जब तुम्हें पता है दिन बड़े होते हैं तो हम अधिक देर तक खेल कूद सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, इससे हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता है, पीयूष भी हाजिर जवाब था, वह तुरंत बोला, लेकिन माँ इस खेल कूद में जो पसीना आता है उससे भी तो तबीयत खराब हो जाती है, माँ पीयूष की इस बात को सुनकर हंस गई और बोली, तुम इसको गलत समझ रहे हो, तुम्हें पता है हमारे शरीर से पसीना निकलने पर हमारे शरीर से अनेक विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जिससे हमारी त्वचा और शरीर स्वस्थ रहते हैं, पसीना अधिक निकलने से प्यास भी अधिक लगती है, प्यास अधिक लगेगी तो व्यक्ति पानी भी ज़्यादा पिएगा, इससे हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है और हमारे लीवर

और किडनी स्वस्थ रहते हैं। यह बात तो आप सही कह रही हैं माँ। माँ फिर बोली, तुम्हें पता है यह गर्मियों के दिनों में तरबूज, खरबूज, आम, खीरा, ककड़ी जैसे सब्जी और फलों का उपयोग ज़्यादा करते हैं। यह फल हमें पानी की पूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही इनमें तरह तरह के विटामिन और मिनरल होते हैं जो हमें गर्मी के दिनों में ही मिलते हैं। इससे हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। सच कह रही हो माँ, मुझे तरबूज और खरबूज बहुत पसंद हैं और माँ तो मेरा पक्का दोस्त है। माँ और पीयूष दोनों हंस पड़े। तब माँ ने कहा, देखो पीयूष, सर्दियों के बाद कई तरह के कीटाणु और रोगाणु वातावरण में उपस्थित होते हैं। गर्मियों में यह सब नष्ट हो जाते हैं और इससे संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। आप सही कह रही हैं माँ। पीयूष, तुम्हें पता है यह गर्मियों में कैसा भोजन लेते हैं? हाँ माँ, अधिकतर हम ठंडा और आइसक्रीम वाला भोजन पसंद करते हैं। हाँ माँ, इसके अलावा हम लोग हल्का और पौष्टिक भोजन करते हैं। ज़्यादा चिकना भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। गर्मियों में सत्तू, छाछ, दही आदि भोजन हमारे लिए अच्छे शरीर अच्छा बनता है। हाँ माँ, यह तो आप सही कह रही हैं। गर्मियों में ठंडा और कम चिकनाई वाला भोजन ही हमें अच्छा लगता है। तो बताओ पीयूष, यही तो फायदा है गर्मियों का। तो मैं बताऊँ, गर्मियों में पानी वाले खाद्य वस्तुएं और भोजन करने से हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई हो जाती है। बताओ फिर गर्मी का मौसम कैसे खराब है? सच माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ज़्यादा गर्मी मुझे अच्छी नहीं लगती। माँ, हाँ बेटा, गर्मियाँ हमें बहुत फायदा देती हैं, लेकिन यदि हम लापरवाही करें तो यह हमें बहुत अधिक नुकसान भी दे सकती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए कुछ सावधानी भी रखनी होती है। माँ ने पीयूष को प्यार से समझाते हुए कहा, हाँ माँ, हमारे अध्यापक जी बता रहे थे। क्या बता रहे थे? बस यही कि हमें ज़्यादा गर्मी में सीधे धूप में नहीं निकलना चाहिए, खासकर दोपहर में लू के समय हमें अंदर ही रहना चाहिए और माँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए। हमारे अध्यापक बता रहे थे हमें हल्के और ढीले कपड़े पहनना चाहिए और भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। देख लो, अब तुम ही बताओ, गर्मी की ऋतु में नुकसान तो है लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। फिर गर्मी की ऋतु का आनंद तो पर्यावरण के साथ होता है पीयूष। ये गर्मी जितना है हम इंसानों के लिए फायदेमंद होती है, उससे कहीं अधिक यह प्रकृति के लिए भी फायदेमंद होती है। माँ ने पीयूष को कहा। वह कैसे माँ? पीयूष ने जिज्ञासा से माँ की ओर देखते हुए कहा, देखो पीयूष, गर्मियों में हमें भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही पेड़ों को भी गर्मी सहनी पड़ती है, लेकिन पीयूष, इस गर्मी के दौरान धूप की अधिकता से फसलों को बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। यह धान, मक्का, मूंग, कपास के लिए बहुत फायदेमंद होती है। माँ ने पीयूष को समझाया। अरे वाह माँ, गर्मी तो बहुत अच्छी होती है, पीयूष चहका। तब माँ बोली, पीयूष, गर्मी पर्यावरण की सफाई का काम भी करती है। इससे कई प्रकार के कीटाणु और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। माँ, यह तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। हाँ बेटा, गर्मी तो इससे भी अधिक सफाई करती है। देखो, गर्मी से तालाबों और अन्य जल स्रोतों का जल सूख जाता है, जिससे मानसून के दौरान जल भराव के लिए जगह भी बनती है। और तो और, यह प्राकृतिक चक्र के माध्यम से पृथ्वी के तापमान को संतुलित कर जलवायु संतुलन में भी मदद करती है। माँ ने पीयूष को समझाया। अरे वाह माँ, गर्मी के तो आप गुण ही गुण बता रही हो। अरे पीयूष, तुम्हें नहीं पता, गर्मी की ऋतु का सबसे बड़ा फायदा है सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा क्या होती है? पीयूष ने अचरज से पूछा। बेटा, इससे सूर्य की धूप से बिजली बनाई जाती है। इस ऋतु में धूप ज़्यादा देर तक होती है, इसलिए सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, जिससे बिजली की आवश्यकता की पूर्ति भी खूब होती है। अरे वाह माँ, गर्मी तो हमारे विकास में सहयोग करती है, इससे तो बिजली भी बन जाती है। वाह, पीयूष खुश होता हुआ बोला। हाँ बेटा, यह ऋतु हमारे विकास में निश्चित सहयोग देती है। तुम्हें पता है हम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? माँ, हम लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। पीयूष, गर्मी में लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। वाह माँ, यह गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, पीयूष खुश होकर बोला। हाँ बेटा, यह गर्मी होने वाली वर्षा का संकेत भी देती है। वह कैसे माँ? बेटा, जिस वर्ष ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस वर्ष

0: ज्यादा वर्षा होती है और यह हमारे मानसून का भी संकेत होती है। वह कैसे माँ? पीयूष ने प्रश्न किया। बेटा, गर्मी की ऋतु से भूमि गर्म होती है और इससे मानसूनी हवाओं का आगमन संभव होता है। इसी से गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है जो इस धरती को इस हरा भरा बनाती है। अरे वाह माँ, यह गर्मी तो बहुत ही अच्छी होती है, पीयूष खुश होकर बोला। और क्या बेटा, गर्मी तो बहुत भली होती है, बस अपने नज़रिए को सही कर लो, माँ बोली। तभी पीयूष का विद्यालय सामने आ गया। माँ, मेरा स्कूल आ गया, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे गर्मी भी अच्छी लगेगी। इतना कहकर पीयूष स्कूल की ओर बढ़ गया।
1: बच्चों, अभी आपने संतोष देवी द्वारा सुनी बाल कहानी गर्मियों का मौसम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं अपनी दूसरी चर्चा की ओर। बच्चों, हमारी दूसरी चर्चा है विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। ये संपूर्ण विश्व में 1 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दूध के संबंध में ध्यान आकर्षित करना एवं दूध उद्योग से जुड़ी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए अवसर प्रदान करना है। प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया था। इस उत्सव में हर वर्ष भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व भर में दूध और दूध उद्योग से संबंधित क्रियाकलापों के प्रचार प्रसार में हर वर्ष ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे मनाया जाता है। प्राकृतिक दूध के सभी पहलुओं के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाते हैं, जैसे इसकी स्वाभाविक उत्पत्ति, दूध का पोषण संबंधी महत्व और विभिन्न दूध उत्पाद सहित पूरे विश्व भर में इसका आर्थिक महत्व। इस उत्सव के दौरान दूध को एक वैश्विक भोजन के रूप में केंद्रित किया जाता है। दूध शरीर के जरूरी सभी पोषक तत्वों का एक बहुत अच्छा स्रोत है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी जैसी अनेक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि दूध एक महत्वपूर्ण आहार होता है, इसीलिए सभी को ये रोज पीना चाहिए। अपने नियंत्रित आहार में दूध को जरूर जोड़ें। इस दिवस को मनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों के बीच दूध के पैकेट वितरित होते हैं ताकि इस उत्सव को और बढ़ावा मिल सके और आम जनता तक इसकी जागरूकता और बढ़े। तो बच्चों, ये चर्चा हो गई विश्व दुग्ध दिवस की, जो कि कल यानी कि 1 जून को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। अच्छा बच्चों, गर्मी के साथ साथ थोड़ी बहुत बरसात भी हो जाती है, तो मौसम में कुछ बदलाव सा हो जाता है और पेड़ पौधों पर हरियाली सी छा जाती है। वैसे भी ये मौसम बरसात का तो है, पेड़ पौधों को लगाने का होता है, क्योंकि पर्यावरण दिवस भी तो 5 जून को होता है। अच्छा बच्चों, पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाना और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना होता है। यह व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों और संगठनों को पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। हर साल एक विशेष थीम और नारा होता है जो उस समय पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण पर भारी जोर दिया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध रहे। बच्चों, हमें भी पर्यावरण दिवस पर ही नहीं, जब भी मौका मिले खूब सारे पेड़ लगाने चाहिए। जिसको भी मिले, कोई अपने जन्मदिन पर लगाता है, कोई एनिवर्सरी पे लगाता है, कोई विशेष दिन लगाता है, लेकिन बच्चों पेड़ जरूर लगाने चाहिए। अच्छा बच्चों, बातें तो बहुत सारी हो गई और होती भी रहेंगी, पहले आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, जानवरों की दुनिया, जंगल का राजा शेर। वार्ताकार हैं ओम प्रकाश शर्मा।
2: प्यारे बच्चों, आज हम जानवरों की दुनिया व जंगल के राजा शेर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जानवरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जानवर

हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। जानवरों की दुनिया बहुत ही अजीब होती है, ये मानव जीवन को बेहतर बनाते हैं। कुछ जानवर हमारे मित्र होते हैं तो वहीं कुछ जानवर हमारे शत्रु भी होते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, लकड़बग्घा आदि बहुत ही खूंखार भयानक जानवर माने जाते हैं, जबकि हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, बैल व बकरी आदि पालतू जानवर होते हैं। बच्चों, जानवर धरा के अद्भुत जीव हैं, ये हमारे जीवन को रंगीन बनाते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। शिकार करने वाले जानवर जैसे शेर, चीता, तेंदुआ आदि जंगलों में अन्य जानवरों की संख्या को नियंत्रित भी करते हैं, जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। जैव विविधता को बनाए रखने में भी जानवरों की भूमिका होती है। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, अन्य कीटों का पराग कृषि के लिए बहुत उपयोगी होता है। जानवर कृषि कार्यों में भी मदद करते हैं। जानवर चिकित्सा वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी योगदान देते हैं। जानवरों का उपयोग शोध कार्यों में भी किया जाता है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पालतू जानवरों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुत्ते, बिल्ली और खरगोश आदि पालतू जानवर हमारे मित्र हैं। ये जानवर मानसिक शांति, खुशी और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। सच्चे बच्चों, जानवर बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जानवरों में एक दूसरे के प्रति गहरा लगाव होता है। जानवर संतोषी होते हैं। जानवर झूठ भी नहीं बोलते हैं। जानवर विश्वासघात भी नहीं करते हैं। जानवरों में ईमानदारी इंसानों से भी ज़्यादा पाई जाती है। जानवरों में रिश्ते भी देखे जाते हैं। ये बालिग होने तक अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उसके बाद तो ये अपने बच्चों को अपने बराबर ही मानते हैं। ये एक दूसरे को नर और मादा के रूप में देखते हैं। पालतू जानवर, जंगली जानवर, समुद्री जीव आदि सभी प्राकृतिक संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अच्छे बच्चों, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जीवों का शिकार और प्रदूषण जैसी महाविनाशी कारणों से जानवरों की प्रजातियां घोर संकट में हैं। यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो इनकी कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। ऐसा होना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ऐसी स्थिति मानव जीवन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। अतः जानवरों का संरक्षण करना हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। सरकारें, समाज के लोग जानवरों के संरक्षण के लिए उचित प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आने वाली पीढ़ियों को जानवरों के छायाचित्रों को देखकर संतुष्ट और राजी होना पड़ेगा। जानवर हमारे जीवन का अंग है। हम सबको जानवरों का सम्मान करना है, सबको मिलके उनका संरक्षण भी करना है। धरती, मानव जीवन के लिए जानवरों का संरक्षण अति आवश्यक है। इसके लिए सरकार शिकार पर कठोरता से प्रतिबंध लगाए, अवैध वन्य जीव व्यापार पर रोक लगाई जाए, वन्य जीवों को सुरक्षित आवास देने की व्यवस्था की जाए। बच्चों, जंगल का राजा शेर। शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर नहीं है। शेर जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर भी नहीं है। शेर सबसे लंबा और शक्तिशाली भी जानवर नहीं है। मगर फिर भी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। क्यों? कि उसमें राजा के समस्त गुण पाए जाते हैं। वह जंगल में राजा की तरह ही रहता है। शेर को ताकत, साहस, निडरता, निर्भीकता, वीरता, आक्रामकता, धैर्य और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। शेर दूसरे जानवरों का मांस खाता है। शेर की दाढ़ बहुत भयंकर होती है। शेर की दाढ़ को 8 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से सुना जा सकता है। शेर के इन्हीं गुणों के कारण उसे जंगल का राजा कहा जाता है। शेर शिकार करके ही भोजन करता है। अफ्रीका और भारत के गिरवन में शेरों को देखा जाता है। समय के साथ साथ शेरों की संख्या घट रही है, ये बहुत दुख और चिंता की बात है। बच्चों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को सिंह के समान बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि का नेतृत्व किया था। भगवान श्री कृष्ण के पास नेतृत्व की क्षमता थी। भगवान ने उसी क्षमता के बल पर हताश, निराश अर्जुन को युद्ध में विजय दिला दी थी। ऐसा ही नेतृत्व की क्षमता
जंगल की राजा शेर के पास होती है। शेर जंगल के जानवरों का नेतृत्व करता है, शेर में लीडरशिप का गुण होता है। कहा जाता है कि एक भेड़ के दल का नेतृत्व शेर करता है, वहीं दूसरी ओर एक शेरों के दल का नेतृत्व भेड़ करती है। तो ऐसी स्थिति में

0: भीड़ों का दल जीत जाता है, वहीं शेरों का दल हार जाता है। जीत हार हमेशा नेतृत्वकर्ता के हाथ में होती है। बच्चों, जानवरों के साम्राज्य में शेर को सम्मानीय माना जाता है। संसार की जितनी भी संस्कृतियां हैं शेर को गौरव का प्रतीक मानती हैं। हाथी को देखते ही शेर कहता है ये मेरा भोजन है, वहीं हाथी शेर को देख करके मान लेता है कि ये मेरा भक्षक है। शेर का जीवन संघर्ष से भरा होता है। शेर जंगल में एक राजा की भांति रहता है। शेर जंगल में शेरनी और अपने बच्चों के साथ रहता है। शेर की शेरनी शिकार कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। उस दौरान शेर घर पर बच्चों की देखभाल करता है। शेरनी शिकार को शेर को ला करके दे देती है। सबसे पहले शेर भोजन करता है, उसके बाद शेरनी और उसके बच्चे भोजन करते हैं। शेर में एकाग्रता का गुण होता है। शेर हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर एकाग्र रहता है। शेर हमेशा अपने लक्ष्य पर नज़र टिका के रखता है। यही कारण है कि वह शिकार करने में सफल हो जाता है। शेर में धैर्य व सब्र करने का गुण पाया जाता है। शिकार करने में से पूर्व शेर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। शेर धैर्यपूर्वक शिकार के आने तक इंतजार करता है, फिर अचानक उस पर हमला कर देता है। इस प्रकार से आसानी से वो शिकार कर लेता है। शेर में सीखने व प्रशिक्षण लेने का गुण भी पाया जाता है। शेर अपना लक्ष्य तय करता है। लक्ष्य प्राप्त न होने तक वह जी जान से लगा रहता है और लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेता है। शेर झुंड में रहना पसंद नहीं करता है। शेर अपने परिवार के साथ रहता है या फिर अकेला शिखर पर एक राजा की वहाँ बैठा रहता है। प्यारे बच्चों, शेर से हम साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता, निडरता व निर्भीकता जैसे गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम भी अपने जीवन को स्वाभिमान और आनंद के साथ एक शेर की भांति जी सकते हैं।
1: बच्चों, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा सुनी आपने ये वार्ता, जानवरों की दुनिया, जंगल का राजा शेर। तो बच्चों, इसी के साथ, इस वार्ता के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। लेकिन बच्चों, जाने से पहले आपको तो पता है कि आपको क्या करना होता है। आपको लिखना होता है हमारा पता। लेकिन बच्चों, पता लिखने से पहले आपको पेन कॉपी निकालनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा हमारा पता, और हमें बताना पड़ेगा कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है और हम इस कार्यक्रम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, जल्दी जल्दी हमारा पता लिखो। हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा। बच्चों, जय हिंद।

अन्य बच्चे सुन रहे थे पाल गोपाल कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी पूनम यादव। FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष होने के उपलक्ष्य में मुशायरा। प्रतिभागी हैं मोहम्मद अशफाक समर, योगेश शमीम कौसर और जमील रौनक।
1: सामईन हजरात, आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज का मुशायरा मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें मैं मोहम्मद अशफाक समर कोसवी और मेरे साथ मोहतरमा शमीम कौसर जी, जनाब जमील रौनक साहब और योगेश कुमार जी बेखुद मेरे साथ मौजूद हैं। आज इस मुशायरे का इफ्तिताह करते हुए इन चार मिसरों के साथ के गांव देखे हैं न महलात के दर देखे हैं, गांव देखे हैं न महलात के दर देखे हैं, हमने तो सिर्फ सितारों के नगर देखे हैं, उड़ती देखी है किताबों से स्याही हमने, और मिटते हुए औराक़े हुनर देखे हैं, और मिटते हुए औराक़े हुनर देखे हैं। इन चार मिसरों के साथ मैं दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब जमील रौनक साहब के वो आए और अपने कलाम से सामईन को महजूज करें। जनाब जमील रौनक साहब।
2: काबिल एहतराम सदर मोहतरम, मजलिस की निजामत कर रहे मास्टर अशफाक समर साहब, मजलिस में शरीक शोरा हजरात व सामईन हजरात, पेश खिदमत है आकाशवाणी की नज़र कता। कहा है कि फलक पर जिस तरह रोशन चमकते चांद तारे हैं,
1: क्या बात है, क्या
2: फलक
1: बात
2: पर
1: है?
2: जिस तरह रोशन चमकते चांद तारे हैं, जमीन पर इस तरह आकाशवाणी के नजारे हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
2: जमीन पर इस तरह आकाशवाणी के नजारे हैं, जहाँ के कोने कोने में है चर्चा इसकी शोहरत की,
1: वाह वाह वाह वाह।
2: जहाँ के कोने कोने में है चर्चा इसकी शोहरत की, सजा कर महफिले हर रोज 90 साल गुजारे हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: सजा कर
1: वाह वाह वाह
2: महफिले हर रोज 90 साल गुजारे हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: इसके बाद मैं गजल पेश करता हूँ
1: जी इरशाद,
2: मतलब समाप्त फरमाए। कहा है मुश्तकिल गम उठाए हम कैसे,
1: क्या बात है, क्या बात है?

0: ते, और कहा है कि जिन लकीरों पे नाम है तेरा,
1: जिन लकीरों पे नाम है तेरा, वाह,
0: जिन लकीरों पे नाम है तेरा,
1: क्या बात है,
0: जिन लकीरों पे नाम है तेरा वो लकीरें मिटाएं,
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: कैसे, शुक्रिया। और है करम की नजर रकीबों पर,
1: है करम की,
0: है करम की नजर रकीबों पर, रस्म उल्फत निभाए,
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: कैसे,
1: वाँ वाँ वाँ वाँ।
0: शुक्रिया,
1: उल्फत निभाए।

0: से और हम सफर है न राह बर कोई।
1: वाह वाह, क्या बात है, क्या
0: हम
1: बात है।
0: सफर है।

0: पाए
1: क्या बात है,
0: हम कैसे।
2: शुक्रिया।
0: और पास रह कर भी कितनी दूरी है,
1: पास रहकर
0: पास

0: बोझो नफरत की तेज आधी में शम में उल्फत
1: क्या बात है, क्या
0: जलाए
1: बात है, वाह वाह वाह वाह,
0: कैसे
1: शम में उल्फत जलाए
0: शुक्रिया
1: कैसे, क्या बात
0: बोझो।
1: है।

0: हम
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
2: बहुत
0: शुक्रिया। अब मख्तार है
1: जी इरशाद।
0: जिन गुलों से चमन में है रौनक, जिन गुलों से चमन में है रौनक, उन पे खंजर
1: था
0: कैसे।
1: बहुत शुक्रिया।
0: जिन गुलों से चमन में है रौनक,

0: ऐसे मुश्तकिल गम उठाए हम कैसे आंसुओं से नी। शुक्रिया,
1: बहुत खूब, बहुत
2: बहुत
1: खूब,
2: खूब, बहुत
1: बहुत
2: खूब रौनक साहब। बहुत मुरस्सा गजल पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद जमील रौनक साहेब। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा शमीम कौसर से इन चार मिसरों के साथ कि आईना जब भी संवरने को उठाया होगा, आईना जब भी संवरने को उठाया होगा, मेरा चेहरा ही तेरे सामने आया होगा, और उसको काजल की जरूरत ही नहीं है यारो, जिनकी आंखों में हंसी रात का साया होगा,
0: बराबर।
2: जिसकी
0: बहुत खूब,
2: आंखों में हंसी
0: बहुत
2: रात
0: खूब,
2: का
0: बहुत
2: साया
0: खूब,
2: होगा।
0: बहुत खूब।
2: मोहतरमा शमीम कौसर साहिबा।
3: हाजरीन व नाजरीन अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
3: सबसे पहले मैं पिरसार भारती के लिए चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ।
2: जी, रिशाद।
3: हिंदुस्तान की शान है पिरसार
2: क्या बात है,
3: भारती,
2: क्या बात है।
3: हिंदुस्तान की शान है पिरसार
2: हाँ,
3: भारती, दानिश्वरों की जान है पिरसार
2: वाह वाह वाह वाह वाह
3: भारती।
2: वाह।

0: रब पे मेहरबान है इन सब पे मेहरबान है फिर सारे भारती।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे
0: जी, बहुत शुक्रिया। अब यहीं से मैं अपनी शेर सफर का आगाज करती हूँ, गजल का मतलब पढ़ती हूँ और आप सभी से दुआएं चाहती हूँ। दिल में

0: तू
1: मेरे
0: मेरे साथ
1: चलो,
0: कुछ मोहब्बत में असर है, तू मेरे साथ चलो। और सानी मतलब पढ़ती हूँ, हौसला।

0: सफर
1: मेरे साथ
0: मेरे साथ चलो तुमको मंजूर सफर है तू मेरे साथ चलो बज़्मे कातिल से गुजरना है खुदा खैर करे बज़्मे कातिल से गुजरना है खुदा खैर करे बज़्मे

0: है तू
1: मेरे
0: साथ
1: जिंदगी
0: ख्वाबों अगर है
1: क्या
0: तू
1: बात है,
0: मेरे
1: साथ
0: साथ चलो, जिंदगी ख्वाबों अगर है तो मेरे साथ चलो।
1: बहुत खूब, बहुत
0: और ये शेर भी पढ़ना चाहती हूँ अशफाक भाई, और आप सभी की नजर करती हूँ। मैं अंधेरों की मुसाफिर हूँ, मुझे क्या मालूम।

0: सहार है
1: तुम मेरे साथ
2: उम्मीद सहार है
0: तुमको उम्मीद सहार है तुम मेरे साथ चलो तुमको उम्मीद सहार है तुम मेरे साथ चलो। और ये मेरा पसंदीदा शेर है इस गजल का। रात तारीख है और प्यार का रास्ता है तभी
1: क्या बात है।

0: डर है
1: मेरे साथ चलो।
2: बहुत अच्छा
0: का डर है मेरे साथ चलो। तुमको तन्हाई का डर है तो मेरे साथ चलो। और ये मक्ते का शेर मुलाजा फरमाए, मुझको पाने में जरा देर लगेगी कौसर।

0: कि वो इन चार मिस्रों के साथ अपने कलाम से हमें रोशनास कराए कि हम चित्त को साध लक्ष्य की आराधना करें, हम चित्त को साध लक्ष्य की आराधना करें, पतझड़ में नव बसंत की स्थापना करें,
1: वाह
0: और होते हैं कर्ण वीरों के दिन रैन एक समान, साहस से साधकों की तरह साधना करें, साहस से साधकों की तरह साधना
1: साधना
0: करें,
1: करें। वाह
0: जनाब
1: बहुत खूब,
0: योगेश कुमार जी बेखुद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक भाई। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मुशायरा है, तो आकाशवाणी के लिए कुछ कते पेश
0: जी
2: करता हूँ।
0: स्वागत
2: जरा
0: है।
1: फरमा,
0: अच्छा अच्छा
2: कहता हूँ, स्थापित हो 90 वर्षों से नित दिन प्रस्तार किया है,
1: वाह
2: स्थापित हो 90 वर्षों से नित दिन प्रस्तार किया है, जनमानस की बातों का जन जन तक संचार किया
0: क्या बात
2: है,
0: है, क्या बात है।
2: स्वर गूंजे देश में सारे, आकाशवाणी नाम हुआ, कला संस्कृति के संवर्धन का पुष्ट आधार किया
0: क्या
2: है।
0: बात है, क्या बात है
2: और आकाशवाणी ने जो किया है चार मिसरों में,
0: जी।
2: कि सभी क्षेत्र के लोगों को अवसर उपलब्ध कराए हैं, गुमनामी के बाशिंदे भी अंबर पे चमकाए
0: क्या बात है,
2: हैं,
0: वाह वाह।
2: लोक कला संगीत खबर विधा सब पहुंची जन जन तक, बन प्रहरी जनमानस में चेतन का विस्तार किया है।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे
2: बन
0: योगेश जी, वाह
2: प्रहरी
0: वाह।
2: जनमानस में चेतन का विस्तार किया है। एक गजल के कुछ आशार पेश कर रहा हूं,
0: जी
2: मुलाजा
0: इशाद,
2: फरमाए।
0: इशाद।
2: कहता हूं कि आगाज ऊला में है, अंजाम सानी में है।
0: क्या बात है,
2: आगाज
0: ऊला
2: ऊला
0: में
2: में
0: है
2: है,
1: अंजाम सानी में।
2: अंजाम सानी में है, मेरा जिक्र इतना ही उसकी कहानी में
0: क्या
2: है।
0: बात है, क्या बात है,
2: बहुत शुक्रिया।
1: बहुत अच्छा,
2: मेरा
1: बहुत
2: जिक्र
1: अच्छा,
2: इतना ही
1: बहुत अच्छा,
2: उसकी कहानी
1: कहानी
2: में
1: में है।
2: है।
1: हाँ
2: और शेर कहता हूं, बोला फरमाए
0: जी, अच्छा।
2: कि जब से कदम उनके गुलशन में पड़े हैं तब से,
1: वाह,
2: जब से कदम उनके गुलशन में पड़े हैं तब
1: तब से
2: से, उस ख्याल की खुशबू मेरी जिंदगानी में है।
0: क्या बात है, क्या बात
1: वाह,
0: है, उस ख्याल
2: उस
0: की खुशबू
2: ख्याल की
0: मेरी
2: खुशबू
0: जिंदगानी
2: मेरी
0: जिंदगानी में।
2: जिंदगानी में है, जब से कदम उनके गुलशन में पड़े
0: क्या
2: हैं तब
0: बात है, वाह
2: से,
0: वाह वाह वाह,
2: उस ख्याल की खुशबू मेरी जिंदगानी में है। शेर कहता हूं, मुलाजा फरमाए
1: अच्छा,
2: कि जब से छुआ है बूंदों ने बदन महजबी का,
0: क्या बात है,
2: जब से छुआ
1: छुआ
2: है बूंदों ने बदन महजबी
1: क्या
2: का, सच मानिए तब से फैली आग पानी में है।
0: बात है,
3: वाह वाह वाह,
2: सच मानिए तब से फैली आग
1: आग
2: पानी
1: पानी
2: में है। और शेर कहता हूं
0: जी,
2: कि सब कुछ अता कर देगा वो अगर मांगो उससे,
0: क्या बात है, सब कुछ
2: सब
0: अता
2: कुछ
0: कर
2: अता
0: देगा
2: कर
0: वो
2: देगा वो अगर
0: अगर मांगो
2: मांगो
0: उससे,
2: उससे, पर फायदा अक्सर होता बेजुबानी में है।
0: क्या बात
1: वाह
0: है,
1: वाह,
2: पर फायदा
1: अक्सर
2: अक्सर
1: होता
2: होता
0: बेजुबानी
2: बेजुबानी में
0: जुबानी में
2: है,
0: है।
2: कि संभल कर चलो बिगड़ा माहौल है बस्ती का,
0: क्या बात है,
2: संभल कर चलो बिगड़ा
0: वाह,
2: माहौल है बस्ती का, इस बात का चर्चा होता राजधानी में है।
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह वाह
1: वाह,
0: वाह,
2: इस बात का चर्चा
1: होता
2: होता
1: राजधानी में
2: राजधानी में है, संभल कर
0: जी।
2: चलो बिगड़ा माहौल है बस्ती का, इस बात का चर्चा
0: बहुत
2: होता
0: खूब, बहुत
2: राजधानी
0: खूब
2: में है। और आखिरी शेर कहता हूं, मौलाना
0: जी,
2: फरमाइए
1: इशाद
2: कि
1: इशाद,
2: दिल से निकल जाए वो ये हो नहीं सकता अब,
0: वाह
2: दिल से निकल जाए वो ये हो नहीं सकता अब, उसका अक्स शामिल घर की हर निशानी में है।
0: निशानी में है, बहुत
1: वाह
0: अच्छे, बहुत
2: उसका अक्स शामिल घर की हर निशानी में
1: निशानी
2: है।
1: में
2: और मक्ते का शेर कहता हूं, मौलाना फरमाइए
0: जी, इशाद,
2: कि तस्वीर उसकी जब से दिल में बसी है बेखुद,
0: क्या बात
1: वाह,
0: है, तस्वीर
2: तस्वीर
0: उसकी
2: उसकी जब से दिल में बसी है बेखुद,
1: बेखुद,
2: एक ताजगी मेरी सांसों की रवानी में
0: क्या
2: है।
0: बात
1: वाह
0: है, क्या बात है,
1: वाह,
0: बहुत
2: एक
0: अच्छे, बहुत
2: ताजगी
0: खूब,
2: मेरी सांसों की रवानी में
1: ताजगी
2: है।
1: मेरी सांस
2: और एक गजल के चंद आशार कहता मुलाया फरमाया
1: जी,
2: कि
1: इशाद,
2: जब से दलालों का वज्म में बोलबाला हो
0: क्या
2: गया,
0: बात है, क्या
1: वाह,
0: बात है,
2: जब से दलालों का वज्म में बोलबाला
0: बोलबा
2: हो
0: हो
2: गया,
0: गया,
2: मजलूम के घर का तभी से गुम निवाला हो
0: क्या
2: गया।
0: बात
1: वाह,
0: है,
2: जब
1: मजलूम
2: से
1: के घर,
2: दलालों का बज्म में बोलबाला हो गया, मजलूम के घर का तभी से गुम निवाला हो गया। और शेर कहता हूं अशफाक भाई, मुलाया फरमाया
0: जी जी
2: कि
0: इरशाद,
2: उम्मीद में थे लोग के इमदाद सरकारी मिले,
0: क्या बात है,
2: उम्मीद में थे लोग के इमदाद सरकारी मिले, पर मस्खरों के बीच पैसों का हलाला हो
0: क्या
2: गया।
0: बात है,
1: वाह
0: क्या
1: वाह,
0: बात है, क्या
2: पर
0: बात है, वाह
2: मस्खरों
0: वाह
2: के
0: वाह,
2: बीच
3: वाह वाह,
1: पैसों
2: पैसों
1: का
2: का
1: हलाला
2: हलाला
1: हो गया
2: हो गया। और शेर इसका मुलाजा फरमाइए कि
0: जी,
2: जब से
0: इरशाद,
2: तिजारत हो गई शामिल इबादत में,
0: हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा
2: जब से
0: लिखा है।
2: तिजारत

0: चलो तुम जो हो सब्र का पैकर, तुम मेरे साथ चलो,
1: बहुत अच्छे
0: तुम जो

0: इबादत हो गई शामिल इबादत में, इन काफिरों के हाथ महबस में शिवाला हो गया।
1: आए है, क्या बात है,
0: काफिरों के हाथ
1: बहुत सच्चा
0: महबस में शिवाला हो गया। और एक गजल के कुछ अशार और हैं, समा फरमाए। कहता हूँ कि तैर कर दरिया पार करने का इरादा कर लिया, तैर कर दरिया पार करने का इरादा कर लिया, तो लोग कहने लगे तैर के नहीं करते तो कैसे करते। हमने कहा आजकल बहुत साधन है लेकिन किया तैर के
1: जी।
0: तो तैर कर दरिया पार करने का इरादा कर लिया, बेवजह अपनी ही मुश्किलों में इजाफा कर
1: लिया।
0: क्या
1: बात है, क्या बात है।
0: तैर कर दरिया पार करने का इरादा कर लिया, बेवजह अपनी ही मुश्किलों में इजाफा कर लिया। और शेर पेश करता हूँ भाई, मेरा फरमाए कि हर रोज लगता था भरोसे के काबिल नहीं दुनिया, हर रोज लगता था भरोसे के काबिल नहीं दुनिया, लेकिन भरोसा फिर जरूरत से ज्यादा कर लिया।
1: कर लिया, क्या बात है।
0: लेकिन भरोसा फिर जरूरत से ज्यादा कर लिया। और शेर है बुलाए फरमाए कि हर बार तौबा मोहब्बत से, हर दफा फिर मोहब्बत।
1: क्या बात है, हर बार तौबा,
0: हर बार तौबा मोहब्बत से, हर दफा फिर मोहब्बत, अपने मिटने का इंतखाब वही पुराना कर लिया।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अपने मिटने का इंतखाब
1: वही
0: पुराना कर लिया। और शेर कहता हूँ कि मेरी तबाही देखने को दुनिया ख्वाहिशमंद थी।
1: क्या बात है, क्या मिसरा है, बहुत
0: मेरी
1: अच्छा मिसरा
0: तबाही
1: है।
0: देखने को दुनिया ख्वाहिशमंद थी, हम मोहब्बत से क्या जिए, दुश्मन जमाना कर लिया। हम मोहब्बत से क्या जिए, दुश्मन जमाना कर लिया। और मक्ते का शेर पेश करता हूँ मुलाजा फरमाइए कि देखो तुम्हें भी ये जमाने की फिक्र कैसी लगी, देखो तुम्हें भी ये जमाने की फिक्र कैसी लगी, भूले खुदा को इस कदर के अपना खसारा कर लिया।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: भूले खुदा को इस कदर अपना खसारा कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आइए हजरत, अब हम चलते हैं उस शायर की तरफ, अब उनके हुजूर चलते हैं मोहम्मद अशफाक समर साहब, जो अभी तक हम सब शायरों की वजीराई फरमा रहे थे। अब ये आपको अपने कलाम से नवाजेंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ मोहम्मद अशफाक समर साहब से कि अपने कलाम से नवाजें।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के लिए कता पेश खिदमत है,
3: इरशाद
1: तवज्जो का तालिब हूँ। बेगुल साहब देखिएगा,
0: इरशाद इरशाद।
1: कि कितने ही कलाकारों को पहुंचाया शिखर पर।
3: क्या बात, क्या बात।
1: कितने ही कलाकारों को पहुंचाया शिखर पर, पहचान तूने हिंद क्या दुनिया में बना ली। कितने ही कलाकारों को पहुंचाया शिखर पर, पहचान तूने हिंद क्या

है फिर सार भारती। और देखिए चार मिसरे और आपकी खिदमत में पेश हैं कि शोहरत के पायदान पे फिर सार भारती, शोहरत

0: हर हर शहर गांव गलियों में सुनता है आदमी, 90 वर्ष से छा गया जो सबके दिलों पर, सुन सुन के अपने सपनों को बुनता है आदमी, सुन सुन के अपने सपनों को बुनता है आदमी। गजल का मतलब बिला किसी तमीज के पेशे खिदमत है, मुलाहिजा फरमाए कि चर्चा जबां जबां पे सरे आम आ गया।
1: वाह क्या बात है।
0: चर्चा

0: बात है, क्या बात है, क्या बात है।
1: मकतूल पे ही कत्ल का इल्जाम आ गया। और शेर देखिए कि घबरा रहा था गम के अंधेरों से दोस्तों।

0: उनके नगर से होके मैं बदनाम
1: बदनाम आ
0: आ गया,
2: गया।
0: उनके नगर से होके मैं बदनाम आ गया। और देखिए खालिस गजल का शेर है रौनक साहेब, कि बिखरा के जुल्फ अपनी वो जिस समत भी गए,
1: क्या बात,
0: बिखरा के जुल्फ अपनी वो जिस
1: ये समत
0: समत
1: ही गई।
0: भी गए, बिखरा के जुल्फ अपनी वो जिस समत भी गए, खामोश बस्तियों में भी कोहराम आ गया, खामोश बस्तियों में भी कोहराम आ गया। और देखिए शेर देखिए, कि खुशियों से जिंदगी को ना राहत मिली मगर, खुशियों से जिंदगी को ना राहत मिली मगर, दिन गर्दिशों के आए तो आराम आ गया। जी, शुक्रिया। दिन गर्दिशों के आए तो आराम आ गया। और मक्ता पेश खिदमत है, कि गुलशन को मैंने खून से सींचा है ऐ समय, गुलशन को मैंने खून से सींचा है ऐ समय, मुझको खुशी है मेरा लहू काम आ गया। जी शुक्रिया। मुझको खुशी है मेरा लहू काम आ गया, चर्चा।

0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुशायरे का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। मेरे साथ सभी शायरों ने जिन्होंने अपने अपने कलाम पेश किए, बहुत खूबसूरती गाओ, मैं सब सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम लोग सदा इसकी पजीराई करते रहें, इसकी तारीफ करते रहें। शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष होने के उपलक्ष्य में मुशायरा। प्रतिभागी थे मोहम्मद अशफाक समर, योगेश शमीम कौसर और जमील रौनक। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आपने सुना उदित नारायण अलका याग्निक को फिल्म कहो ना प्यार है में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है आमने सामने।

नारायण साधना सरगम को अभी आपने सुना फिल्म जो जीता वही सिकंदर में, और आइए सुनते हैं उदित नारायण अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा।

अभिजीत कविता कृष्णमूर्ति के गाए फिल्म मोहब्बत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किडबैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
4: चले
5: ले आ गया नया किडबैग।
6: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है।

0: सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई टीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए।
3: अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
4: नमस्कार सर। नमस्कार।
5: नमस्कार सर।
3: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
4: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
6: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो।

0: तो मैं कहा भी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे, और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीरभिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ, तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, जैसे अभी रिकॉर्ड करने

पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो

0: एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है। ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी,

जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब

का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब,

अब कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी, किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूं जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह

0: अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम।
2: दिन के 11:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं और आपको आज के खास दिवस से जुड़ी हुई बातों के साथ कुछ गीत भी सुनवाएंगे। और आज श्रोताओं को पता ही है कि 31 मई सन 2026 का दिन है, आज दिनांक है। आज का दिन समूचे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस के नाम से आयोजित किया जाता है। हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है ताकि तंबाकू और उससे बने हुए उत्पादों के सेवन से जुड़ी हुई जितनी जोखिम है, जितनी हमारे परिवार और समाज में उठाई जाने वाली परेशानियां हैं, इनके कुप्रभाव हैं, इन सब के प्रति जानकारी जुटाई जाए, जागरूकता हासिल हो ताकि इन का सेवन और इनका प्रयोग हम सब निषेध करें। हमारे परिवारों में आमजन सभी इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तंबाकू का सेवन कई प्रकार से होता है और कई प्रकार से यानी कि कुछ लोग सिगरेट के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग हुक्के में भर के करते हैं, कुछ लोग बीड़ी में, कुछ लोग जर्दा में, कुछ लोग विभिन्न प्रकार से इस तंबाकू का प्रयोग अपने जीवन में जुड़े हुए बैठे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जीवन में जुड़े हुए बैठे हैं इनका प्रयोग, उसी प्रकार से इनके कारण होने वाली बीमारी हमारे अंग प्रत्यंग को घायल करती है। तंबाकू का सेवन कई प्रकार के कैंसर को बुलावा देता है। कैंसर जो कि फेफड़े में हो सकता है, जो कि स्वरयंत्र की नलिका में हो सकता है, जो कि हमारे खाने की नली ग्रास नली में हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, मूत्राशय में, गुर्दे में, यकृत में, पेट में, अग्नाशय, बृहदान्त्र और गर्भाशय की ग्रीवा में, यानी कि कौन सा शरीर का अंग बाकी रहा जो ये प्रभावित नहीं करता या कैंसर से पीड़ित नहीं करता। तो जब हम सब ये जानेंगे तो शायद अपने आप को उसके प्रयोग के साथ रोकेंगे, अपना बचाव करेंगे। और अनुमान तो ये भी है कि तंबाकू के सेवन से प्रति वर्ष, जी हाँ, एक साल के भीतर लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु होती है समूचे संसार में। कितना बड़ा आंकड़ा है। एक छोटी सी वस्तु के कारण हम सभी पीड़ित होते हैं और पीड़ित होने के बाद अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसे तंबाकू के निषेध के लिए हम सबको एक साथ जुड़ना होगा, जागरूकता जगानी होगी और उसके बाद इसका निषेध करते हुए उन लोगों को

निशाना होगा जो इनका प्रयोग करते हैं इनके प्रयोग के आदि हो चुके हैं। किस प्रकार से ये हमें प्रभावित करता है और किस प्रकार से हम अब अपने आप को दूर करें, ये हमारे लिए संकल्प का विषय है। अगर हम संकल्पित होकर बात करते हैं एक कदम आगे बढ़ाने की, तो फिर कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। हमारी संकल्प शक्ति के आगे कोई भी चीज़ हमें रुकावट बनकर नहीं सामने आ सकती। तो फिर बातों के साथ साथ गीत भी सुनना है ना, तो सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत और उसके बाद फिर से जारी रखेंगे अपनी बातों को।

जैसा कि आपने इस गीत में भी सुना कि कहा जा रहा था कि नशा हम सब के लिए बहुत फायदेमंद नहीं, इसका विरोध करना, इससे दूर हटाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ख़ास करके अगर हम बात करें इस तंबाकू के नशे की, तो इसमें कोई उम्र खास नहीं देखी गई, क्योंकि बच्चे भी तंबाकू का उपयोग कर लेते हैं, वृद्धजन करते हैं, महिलाएं करती हैं, पुरुष करते हैं, युवा वर्ग करता है, यानी कि कोई भी आयु सीमा का व्यक्ति इस तंबाकू के उपयोग से अपने आप को जोड़ लेता है और एक नशे की लत में लग जाता है। इसीलिए सामूहिक तौर पर हम सब मिलकर विश्व स्तर पर इस दिवस का आयोजन करते हैं, ताकि हमारे लोग जो इस चीज़ से लड़ना चाहते हैं, इस बीमारी को दूर भगाना चाहते हैं, वो इन सब लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, इनकी खामियां उनको गिनाएं, इनसे होने वाले जो नुकसान हैं उसको याद दिलाएं, समझाएं। इस वर्ष 2026 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का जो विशेष विषय लिया गया है वो है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। देखा यह जाता है कि बहुत सारे बच्चे या युवा वर्ग के लोग या और भी प्रकार के लोग जो इस तंबाकू का उपयोग करते हैं, वो एक विज्ञापन के फंसाव में अपने आप को आगे बढ़कर पाते हैं कि हम ये करके देखते हैं। कहते हैं विज्ञापन का जो प्रभाव है उनके मनोमस्तिष्क पर पड़ता है और वो इसका उपयोग करना शुरू करते हैं। तो इस बार हमारी सरकार ने ये भी विचार किया है कि निकोटीन और तंबाकू से जुड़े हुए जो ये विज्ञापन होते हैं, जो बच्चों को, किशोरों को लुभाने का काम करते हैं, उनको किस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करना है, उनका विपणन कैसे करना है, इस विषय पर विचार किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो समस्या है कि देख करके बालक या युवा वर्ग जब रीछते हैं तो उस चीज़ को अब हटाया जाएगा, ताकि ये वर्ग सिर्फ देखकर एक कदम आगे ना बढ़ाए और वो आगे का कदम खाई की तरफ जाता है, हम सब जानते हैं। वैसे 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों में, इन देशों ने दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर तंबाकू के सेवन के विनाशकारी प्रभावों को, यानी कि इससे होने वाली मृत्यु और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की थी। और तब से लेकर आज तक हम हर वर्ष इसका आयोजन करते हैं, और हर वर्ष कुछ न कुछ तो हमें सफलता मिलती ही है, क्योंकि अगर हमारा एक विचार उन लोगों तक पहुंचता है जो इसके बारे में जानते भी नहीं, जिनको इसका नुकसान नहीं पता, वो जब जागते हैं, जागरूक होते हैं, तो इस पथ से ज़रूर पीछे अपने आप को हटाते हैं। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको मनाते हैं, क्यों हम इतनी सारी बातें आपसे कर रहे हैं, क्या विशेष है इसके पीछे, इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का सेवन करने वालों के बीच में इसकी खेती, इसका उत्पादन, इसके वितरण, उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन सहित तंबाकू के संपूर्ण जीवन चक्र के बारे में, उससे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना, मूल रूप से उन्हें ये शिक्षित करना, उनको ये शिक्षा देना कि इसके छोड़ने के लिए पर्याप्त कारण क्या हैं। यदि हम उनको नहीं बताएंगे कि क्यों आप इसको छोड़ें, तो कोई भी व्यक्ति जो जुड़ चुका है वो छोड़ने को तैयार नहीं होगा। तो पहला उद्देश्य तो यही है। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि इसका उद्देश्य तंबाकू और धूम्रपान के सेवन से होने वाले बीमारियों और मृत्यु

को समाप्त करना है। जब हम इससे पीछे हटेंगे तभी तो ये चीजें हमें मिलेंगी आगे। तंबाकू कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद को पर्यावरण के अनुकूल बताकर की जाने वाली जो धोखाधड़ी है उसको उजागर करना भी इसका उद्देश्य है। और इस अभियान का उद्देश्य नीति निर्माताओं और सरकार से सख्त नीति और दिशा निर्देश बनाने और मौजूदा नीति को मजबूत करने का भी है, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तंबाकू उत्पादों के कचरे के लिए तंबाकू उत्पादों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि तंबाकू जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है, वैसे ही हमारे पर्यावरण के लिए भी ये नुकसानदेह है। आश्चर्य की बात है ना, लेकिन ये वास्तविकता है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व स्तर पर हर साल तंबाकू की खेती के लिए लगभग 35 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है। कितना नुकसान होता है ना, विषय सोचने का। लेकिन हम जागरूक नहीं होते तो नहीं विचार कर पाते। लेकिन शायद आपसे हमारी बातों के बाद हम सोचें, विचारें और उन लोगों को ये बात बताएं जिनको इसके बारे में भान भी नहीं है। तंबाकू की खेती के कारण हर साल लगभग 20,000 हेक्टेयर वनों की कटाई होती है और मिट्टी का क्षरण होता है। विश्व स्तर पर हर साल लगभग 45 लाख करोड़ सिगरेट के टुकड़े ठीक से नहीं फेंके जाते हैं, यानी कि उनका निस्तारण ठीक से नहीं हो पाता। प्रतिवर्ष 80 करोड़ किलोग्राम विषैला अवशिष्ट उत्पन्न करना और हजारों रसायनों को हवा, पानी और मिट्टी में छोड़ देना। तंबाकू की खेती में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग पृथ्वी पर जल संसाधनों को कम कर रहा है। ये तो वैसी ही बात हुई ना कि हम अपने शत्रु का पूरा पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका रखरखाव कर रहे हैं और उसके बदले हमें क्या मिलेगा, अपना ही नुकसान। वही बात है ना, तो हमें जरूर जागना चाहिए हम उस जहरीली वस्तु के लिए क्यों इतना आमादा है, क्यों तंबाकू की खेती की जाए, क्यों इस प्रकार से उसका उत्पादन हो और हम उसके नशे के आदि हों, नहीं ना। इस विचार को तो जरूर करना होगा और विचार करने के बाद समाधान भी हमें मिलता है। और अब आगे बढ़ते हैं एक गीत के लिए।

इस गीत के इन शब्दों ने बता दिया कि शायद तंबाकू की जिसको लत होती होगी या जो लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं वो भी यही कहते होंगे कि दुहाई देते होंगे कि अगर तुम मिल जाओ तो ये सब कुछ मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। लेकिन मन का भटकाव कहीं ना कहीं जारी रहता है और इसी कारण से उनका ये जो धूम्रपान है, ये जो तंबाकू का सेवन है, वो छूट नहीं पाता और उनकी बीमारियां, शरीर उनका बीमार हो सकता है, होता रहता है और आगे आने वाले भयावह रोग उनको बचा नहीं सकते। तो तंबाकू की लत को छोड़ने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो ज़रूरी यही है कि हम अपने मन में दृढ़ संकल्पित हों कि हमें इस बीमारी से अपने आप को मुक्त करना है, इस आदत से अपने आप को मुक्त करना है। अगर आपके अंदर आपका दृढ़ संकल्प जागृत हो जाएगा ना, तो फिर जल्दी ही आप इस नशे को, इस आदत को मात दे सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण आप अपने इस लत को सुधार सकते हैं, आप इस लत को समाप्त कर सकते हैं। जब आपको इस तंबाकू की तलब लगे या मन भटकने लगे कि बार बार मुझे खाने की इच्छा हो रही है, तब क्या करना चाहिए? तब आपको कुछ ऐसी सामग्रियों का सेवन करना चाहिए जो आपको, जैसे तंबाकू चबाने वाले लोगों में चबाने की आदत होती है, तो उसके स्थान पर

आप मिश्री को चबाएं, सौंफ का सेवन करें। सौंफ और मिश्री का जो जब ये मिल जाता है तो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही सार्थक और कामयाब तत्व हैं दोनों। तो उसके अलावा आप लौंग और इलायची का प्रयोग करें, उसको मुंह में रखकर चूसते रहें। अजवाइन और नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर काला नमक छिड़क कर उनको सुखा लें। और जब भी आपको ये गुटखा तंबाकू की याद सताए तो आप उसको अपने मुंह में रखकर चबा करके उस तलब को शांत कर सकते हैं। सूखे आंवले अगर हम सेवन में लाते हैं तो भी हमारे अंदर से ये जो समस्या है, ये जो चबाने की तलब है, ये ख़त्म होती है, ऐसा पाया गया है। कुछ चीज़ें और हैं, अगर हमारे व्यवहारिक तरीके हम बात करें तो आपको ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि कौन सा वो समय है जब मुझे सबसे ज़्यादा उस तंबाकू की आदत का महसूस होने लगता है कि अब लगता है कि मैं बिना तंबाकू के मेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा। उस समय को पहचाने। हो सकता है आपको ड्राइविंग के समय ऐसा लगता हो सकता है आप जब सोने जाते हो तो आपको ऐसा लगता हो, या हो सकता है जब आप बहुत टेंशन में, बहुत तनाव महसूस करते हैं तो आपको तंबाकू की याद आती हो। तो ऐसी परिस्थितियों से बचें, और अगर ऐसा लगता है तो उस समय इन सब चीज़ों का सेवन करें जो हमने आपको बताया। हाँ, एक चीज और, अगर आप चाहें तो शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि दिन में मात्रा की कमी कर सकते हैं, यानी कि आप सेवन का जो क्रम था ना आपका दिन में कई कई बार, उसको कम कीजिए। धीरे धीरे कम करते हुए आप एक बार पर, दो बार से एक बार पर आ जाएंगे, और एक बार के बाद इन चीजों को अगर आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसा तलब लगे तो घूंट घूंट पानी पीना शुरू कीजिए, और याद कीजिए हर बार उस तलब के साथ साथ उस दृढ़ संकल्प को जो आपने अपने मन में लिया है, क्योंकि ये तभी संभव होगा जब आप अपने दिल से पक्की करके ये बात रखेंगे कि अब मुझे इसका सेवन नहीं करना। और हाँ, हम भी कोशिश कर सकते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो इस तलब को छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों बार बार अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करते हैं। उनको हम योग और प्राणायाम का रास्ता भी दिखा सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम का अगर आप प्रयोग करते हैं तो फिर आपको इस बीमारी से निजात मिल सकती है। बहुत सारी चिकित्सा और थेरेपी भी हैं जिनका वैज्ञानिक रूप से आप सहारा लेकर के भी इस तंबाकू, इस नशे को छोड़ सकते हैं और जीवन में सफलता के परचम लहरा सकते हैं और आज के दिवस को भी सफल बना सकते हैं।

और इसी गीत के साथ आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत को यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और ये सुझाव ये प्रयास और हमारी जागरूकता हम सबको आज के दिवस की सार्थकता जरूर सिद्ध करवाएगी। इसी के साथ स्वीकार कीजिए ज्योति शर्मा का नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज फिल्म संगीत में आपको सुनवा रहे हैं चंद फिल्मी कव्वालियां।

कार्यक्रम की ये पहली कव्वाली लीजिए, सुनिए। साथियों के साथ आशा भोसले की आवाज है। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की, संगीत रोशन का।

वक्त फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी मन्ना डे की आवाज़ में। इसे लिखा था साहिर ने और संगीत था रवि का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और आज आपको सुनवा रहे हैं चंद फिल्मी कव्वालियाँ। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में मेरे महबूब फिल्म की कव्वाली। रचना शकील बदायूनी के है, संगीत है नौशाद का।

बरसात की रात, इस फिल्म की कव्वाली आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, सुधा और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना साहिर की, संगीत रोशन का था। और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म की ये कव्वाली। मजरूह की रचना को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मेरे महबूब, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इस फिल्म की कव्वाली आपने सुरी लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 12:30 हुए हैं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं सुनील दत्त चतुर्वेदी। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये लोकगीत।

0: कौन गली में गयो शाम। अभी आपने सुनी ये लोक रचना कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं सुनील दत्त चतुर्वेदी के स्वर में ये अगली रचना।

0: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
6: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा।

0: आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
0: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
0: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत और आज के कलाकार हैं सुनील दत्त चतुर्वेदी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में कार्यक्रम का यह अंतिम लोकगीत।

सुनील दत्त चतुर्वेदी की गाए हुए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आयरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है।

0: चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वीं नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज की सभा में प्रसारित होने वाले और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक विवरण। हमारी सांध्यकालीन सभा में आज रात्रि 9:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अनुगूंज। रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से।

दिन में 1:15 पर आपको सुनवाएंगे आनंद वल्लभ गोस्वामी की लिखी हुई झलकी नशे का जहर। प्रस्तुति होगी आर के त्रिपाठी की। दोपहर 1:30 पर सुनेगा कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे दोपहर 1:45 पर। दिन में 2 होंगे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार और 2:30 पर आप सभी सुनेंगे कार्यक्रम सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। तीन बजे हमारी पहली सभा का समापन होगा और दूसरी सांध्यकालीन सभा का आगाज होगा संध्या 5:30 से। प्रारंभ में आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज के कार्यक्रम युववाणी में आज की बात का विषय रहेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस और एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे तंबाकू निषेध दिवस पर आधारित एक रूपक जीवन का अवसान। आलेख होगा उषा शर्मा का, वाचन देवराज कृष्ण दीक्षित और ज्योति शर्मा का होगा। प्रस्तुति एम के शर्मा की होगी। इसी कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: संध्या 6:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा हरी खाद का इस्तेमाल और विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ब्रज लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम मनभावन लेकर आएंगे इसी कार्यक्रम में। समय याद रखिए संध्या 6:15 से। फिल्मी गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन लेकर आएंगे संध्या 6:45 से। संध्या 7:05 पर आपको सुनवाएंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य मकरंद। आज के कवि होंगे पंडित राकेश कुमार शास्त्री। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा और फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे रात्रि में 8 बजे और कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत रात्रि 8:30 पर सुहाने तराने कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 9:15 पर। रात्रि में 11 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचारों के साथ ही 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक सूचना।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

संवेद स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है आनंद बल्लभ गोस्वामी की लिखी हुई झलकी, नशे का जहर। झलकी के प्रस्तुतकर्ता हैं आर के त्रिपाठी।

0: नेक्स्ट।
1: मे आई कम इन?
0: यस कम इन। तुम? अरे रमेश यहाँ?
1: अरे भाई, मुझे कौन पहचानेगा? डॉक्टर जो बन गए हो
0: अरे
1: ना?
0: नहीं भाई नहीं, ये बात नहीं है।
1: तो क्या बात है?
0: दरअसल तुम इतने फैटी जो हो गए हो, पहचानने में भी नहीं आते यार।
1: आलोक, वास्तव में मैं मोटा हो गया हूं यार। कोई ऐसी दवा देना कि मैं पतला हो जाऊं।
0: अरे भाई इसमें दवा की क्या आवश्यकता है? सुबह सुबह 3-4 किलोमीटर की दौड़ लगाओ, और देखो ये मिठाई खाना जरा कम कर दो।
1: 3-4 किलोमीटर की दौड़? अरे ना बाबा ना, ये तो वही बात हुई ना अपने लिए।
0: कौन सी बात?
1: चंदन लगाना सिरदर्द के लिए मुफीद है, पर चंदन घिसना भी तो एक सरदर्द
0: अरे वाह भाई वाह वाह वाह, तेरा वो शायराना अंदाज तो अभी तक नहीं गया। कॉलेज के समय में भी तू कितना हंसाया करता था, याद है ना?
1: अरे डॉक्टर साहब, यही तो अपनी सेहत का राज है।
0: अच्छा तो अब समझा भाई, अब समझा।
1: और क्या यार, अपनी छोटी सी लाइफ है, हंस बोल कर काटो। ये भी क्या कि हर समय अपने काम को लेकर रोनी सी सूरत बनाए रहो।
0: जैसा कि कॉलेज के दिनों में कपूर था, हर समय सीरियस।
1: अरे हाँ यार, कपूर कहाँ है आजकल?
0: अपनी तो कॉलेज के समय के बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई उससे। मैं तो सीधा दिल्ली चला गया था ना।
1: उसके बाद तो उसने और मैंने साथ ही साथ एमए किया था, लेकिन कॉलेज के अंतिम दिनों में कपूर वह ड्रग्स लेने लगा था।
0: अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। इतना अच्छा इंटेलिजेंट लड़का और कितना अच्छा कवि था वो, ऐसा नहीं हो सकता यार।
1: लेकिन ऐसा ही हुआ है आलोक। पहले तो मुझे ही विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता लगा कि कॉलेज के ही एक लड़के के द्वारा ड्रग्स माफियों ने उसे यह लत लगवाई थी।
0: और उसकी वो प्रेम का क्या नाम था भला उसका?
1: कौन? आरती?
0: हाँ याद आया, आरती। आरती ही तो था उसकी मासूका का नाम। उसने नहीं संभाला उसे?
1: पहले तो उसने बहुत कोशिश की उसे संभालने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पूरी तरह नशे का आदी हो चुका था।

0: मिस्टर अशोक, आप जरा भी चिंता ना करें, मेरी दी हुई दवाओं और हिदायतों का बराबर ध्यान रखें। आपकी सिगरेट पीने की लत मैं बिल्कुल छुड़ा दूंगा।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा।
0: अरे भाई, इसमें

0: जी साहब।
1: रामदीन, जरा 2 कप कॉफी भेज दो।
0: जी साहब अभी लाया।
1: यार रमेश, बड़ी सैड न्यूज सुनाई तुमने। फिर क्या हुआ?
2: फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। आरती उसे छोड़ गई, उसकी कहीं और शादी हो गई।
1: ओह, कैसा अच्छा होनहार था कपूर। कॉलेज के सभी प्रोफेसर उसकी कितनी तारीफ किया करते थे। कहते थे एक दिन कपूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
2: यार आलोक, कपूर बड़ा शालीन और कुलीन था।
0: साहब कॉफी।
1: लो रमेश। यार रमेश, कपूर था तो पुअर फैमिली का लड़का, फिर उसे पैसे कहां से मिलते थे इतनी महंगी महंगी ड्रग्स के लिए?
2: शुरू में उसे लत लगाने के लिए कॉलेज के ही लड़कों ने मुफ्त में ड्रग्स दी।
1: वो कॉलेज का लड़का लगता है ड्रग्स माफिया का ही एजेंट होगा।
2: हाँ
1: ओह, कितने बड़े देशद्रोही हैं ये ड्रग्स माफिया के लोग, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ देना चाहते हैं, अपने ही देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं।

0: यार हमारी बात तो होती ही रहेंगी। देखो कोई सीरियस पेशेंट आया, उसे भी देख लो।
1: जी साहब।
2: रामदीन, देखो सीरियस पेशेंट बैठा है, उसे भेज दो।
1: अभी भेजता हूँ साहब। अरे भाई, आपको डॉक्टर साहब याद कर रहे हैं।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: अरे आरती, तुम?
3: रमेश तुम और डॉक्टर आप आलोक है ना?
2: जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, लेकिन ये
3: नहीं पहचाने से, ये कपूर है।
0: कपूर?
2: कपूर है ये, मगर इसकी ये हालत?
3: हाँ, यही इस अभागे की किस्मत है।
2: अरे रामदीन, इसे इधर लेटा दो। हाँ, अरे ये तो बहुत सीरियस है। हाँ देखो, संभाल के संभाल के। हाँ
0: लेकिन आरती, तुम और इसके साथ?
3: मेरे पति इसी शहर में बैंक में सर्विस करते हैं। अभी बाजार जा रही थी तो अचानक फुटपाथ पर कपूर पड़ा दिखाई दिया। नशे के बिना तड़प रहा था शायद, मुझसे देखा नहीं गया। लोगों से पता चला कि डॉक्टर आलोक का क्लिनिक पास में है, सो तुरंत ले आई।
2: अभी ही तो मुझे कपूर के बारे में पता चला, रमेश ने ही तो बतलाया ये ड्रग्स लेने लगा है।
3: अब तो शायद इसकी जान ही लेके छोड़ेगा इसका नशा।
2: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आरती, मैं अभी इसे इंजेक्शन देकर होश में लाता हूं।
0: बैठो बैठो ना आरती, देखो क्या संयोग है, कॉलेज के दिनों के बाद हम चार लोग आज अचानक इकट्ठा हो गए।
3: लेकिन कितने बदले हालातों में।
2: देखो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी होश में आ जाएगा।
0: आरती, कितना बदल गया है कपूर।
2: कहां उसका वो आकर्षक और लुभावना व्यक्तित्व, और कहां आज ये दयनीय अवस्था।
3: नशे की लत इसे इतना बर्बाद कर देगी, ये नहीं पता था मुझे। काश।
2: जो हो गया सो हो गया आरती, लेकिन तुम्हें इसी हालत में इसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए था।
0: हाँ आरती, तुम्हारे बिछो के नशे की आदत ने इसको और भी बढ़ावा दिया।
3: मैं सोचती थी कि मेरे कुछ दिनों के लिए दूर जाने से शायद कपूर की आदत छूट जाएगी।
0: कुछ दिनों के लिए? मगर तुम तो उसके बाद कभी आई भी नहीं।
3: हाँ, मैंने कपूर की आदत छुड़ाने के लिए ही वो रिश्ता तोड़ने का नाटक किया था, लेकिन तभी मेरे मम्मी पापा ने मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी तय कर दी, और अब मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ हैं।
2: लगता है कपूर को होश आ रहा है। कपूर, तुम ठीक तो हो ना?
4: मैं कहाँ हूं? और तुम आलोक, यहां कैसे?
0: ये आलोक का ही क्लिनिक है।
4: तुम भी यही हो रमेश? और आरती तुम? ओ आप?
0: हाँ ये आरती हैं, तुम्हें ही फुटपाथ से यही तो उठा करके लाई हैं।
3: आप वहां पड़े हुए तड़प रहे थे।
4: हाँ, याद आया, मैं बिना नशे के तड़प रहा था।
2: लेकिन कपूर, तुम इस शहर में पहुंचे कैसे?
4: पूछो मत दोस्त, किस्मत भी जाने कितने रंग बदलती है। नशे की लत ने पहले मुझसे मेरी पढ़ाई छीन ली, फिर मेरी आरती को मुझसे दूर कर दिया, और उसके बाद मेरी माँ भी मुझसे छीन ली।
3: माँ? माँ? मगर कैसे?
4: मेरी माँ मेरे गम में बिस्तर पकड़ गई। एक दिन माँ की हालत बहुत सीरियस हो गई। पिताजी ने डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने जरूरी दवा और इंजेक्शन लिख दिए। पिताजी ने मुझे पैसे देकर बाजार भेजा। उस दिन पैसे के अभाव में मैं नशा नहीं कर सका, तो माँ के दवा के पैसे से ही ड्रग्स खरीदी। जब रात को घर लौटा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी थी।
2: ओह माय गॉड,
4: माँ नहीं रही।
2: ये तो

0: पिताजी ने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ दिनों तक मैं ड्रग्स माफिया के लिए काम करता रहा और बदले में वे लोग मुझे नशे का जहर देते रहे।
1: लेकिन आज तो तुम
0: बताता हूँ एक दिन पुलिस मेरे पीछे पड़ गई और मैं ड्रग्स की थैली एक नाले में फेंक कर भाग निकला और मैं शहर में आ गया। लेकिन बिना नशे के मेरी हालत ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे बिना पानी के मछली।
2: अब क्या विचार है कपूर तुम्हारा?
0: मैं मरना चाहता हूँ रमेश, मैं मरना चाहता हूँ।
1: जिस जहर ने तुम्हारा संसार लूट लिया उसके पीछे अब अपनी जान भी दे दोगे क्या?
0: और कोई उपाय भी तो नहीं है, कौन बचाएगा मुझे इस जहर से?
3: मैं बचाऊंगा तुम्हें, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी संकल्प करना होगा। आज के बाद कभी नशे की दवा को हाथ तक नहीं लगाओगे। मैं करूंगा तुम्हारा इलाज।
2: हाँ कपूर, हाँ संकल्प लो।
1: आज से कभी जहर को हाथ नहीं लगाओगे?
0: मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से कभी भी इस जहर को हाथ नहीं लगाऊंगा, भले ही इसके बिना मैं मर ही क्यों न जाऊं।
4: अभी तक आपने सुनी आनंद वल्लभ गोस्वामी की लिखी झलकी नशे का जहर। इसमें भाग ले रहे थे विजेंद्र सिंह अटौरिया, सत्यपाल सिंह, भगवान सिंह चौहान, मदन सिंह, किशन सिंह कुशवाहा और बबीता शर्मा। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे आर के त्रिपाठी।
5: अभी आप सुन रहे थे झलकी नशे का जहर।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
5: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। आज आपके कॉल्स के साथ में हैं ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित। आइए सुने कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में बातें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ओपी सिंह साहब। नमस्कार सिंह साहब।
1: नमस्कार देवराज जी। और देखो, हम अपनी बात शुरू करें, कोई भूमिका बनाएं और कुछ नई चीज पर हम फोकस करें, इससे पहले हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, तो क्यों ना हम फिर उनके फोन कॉल के साथ ही बात करते हैं।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी नमस्कार
0: जी, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं वृंदावन श्री हरदास धाम राजपुर गांव राधा भावड़ी से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, हमारे कार्यक्रमों के बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं आप?
2: आपके कार्यक्रमों के बारे में हम ये प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं, एक कार्यक्रम ऐसा रखा जाए
0: जी
2: जिसमें हेलो लोकगीत हो।
1: अच्छा।
2: हाँ जी, मतलब लोकगीत अपने मन पसंद के फोन कॉल के द्वारा

0: है
1: जी,
0: ये हमारे मतलब
1: सुझाव है आपका।
0: जी हाँ
2: चलिए, बाकी हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं और अन्य, ये तो आपका सुझाव हो गया कार्यक्रमों के बारे में, प्रतिक्रिया दी।
0: सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और मैं मतलब बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ मतलब रेडियो पर,
2: जी जी
0: और
2: जी
0: अभी मेरी लगभग उम्र हो गई, अभी ज्यादा नहीं है, 22 साल की है।
2: जी जी जी जी तो वृंदावन धाम में कैसे विराजते हैं आप?
0: वृंदावन धाम में मतलब जन्म ही हमारा वृंदावन धाम में हुआ।
2: अच्छा, चलिए, हमें लगा
0: हाँ
2: कहीं
0: जी हाँ
2: बाहर से आप आके वृंदावन धाम में रह रहे हैं, क्योंकि ब्रज में
0: नहीं
2: बहुत
0: नहीं
2: सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, रह रहे हैं, प्रभु नाम का जाप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। चलिए, आप तो ब्रजवासी हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, सुझाव
0: जी,
2: आपका ठीक है।
0: जी
2: जी
0: और मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि हमने सुनी थी रासलीला उखल वंदन, वो बहुत सुंदर लगा, तो मतलब वो कार्यक्रम ऐसे हफ्ते में एक आध कार्यक्रम मतलब एक आध दो घंटे का
2: जी
0: रासलीला या कोई बढ़िया ऐसे।
2: जी तो देखिए, समय सीमा और उनके कार्यक्रमों की अवधि तो जो निर्धारित है उसी में रहते हैं, लेकिन ब्रज भाषा, ब्रज संस्कृति, ब्रज की माटी से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो ब्रज माधुरी हो, ब्रज साहित्यिक हो, उनमें फिर बहुत सारे नौटंकी हैं, ढोला
0: हाँ नहीं
2: है।
0: होता है, आता है आता
2: जी जी तो
0: है, सभी
2: कोशिश
0: आते
2: तो
0: हैं।
2: यही है कि सबकी मुराद पूरी हो, सबकी फरमाइश पूरी हो, लेकिन आपका जो सुझाव है उस पर भी विचार किया जाएगा और जितना जल्दी हो, संभव हो सकेगा, तो उस पर भी हम काम करेंगे। बाकी आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, फ़ोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
2: जी,
0: करके।
2: प्रणाम,
1: नमस्कार। श्रोताओं की बात, फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: राधे राधे,
1: राधे राधे।
3: मैं कृष्ण कुमार त्यागी, सारवा तहसील हाथरस जिला सैपुर ब्लॉक को गांव नगला परसू।
1: जी त्यागी साहब, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
3: कार्यक्रम में ऐसा है कि जैसे तुम्हारा 10:30 बजे बाद में गाने आते हैं फिल्म संगीत, उस समय बात जगह पे बुक कर दू
2: क्या
3: साज आवाज।
2: साज और आवाज?
3: हाँ
2: जी, पहले हमारा ये कार्यक्रम हुआ करता था साज और आवाज,
3: हाँ
2: लेकिन अभी चीजें बहुत बदली हैं, उस तरह के पुराने रिकॉर्ड्स अभी नहीं है, लेकिन देवराज जी क्या कहना चाहेंगे कि किया जा सकता है?
1: किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे श्रोता कभी कभी मांग रखते हैं कि साज
2: पुराने
1: और,
2: समय में लौट
1: जी, साज और आवाज इस कार्यक्रम को पुनः शुरू किया जाए, जिसमें हमारे श्रोता गाने को साज के माध्यम से सुनते हैं और फिर उसके बाद वही गाना हम प्ले करते हैं। जी
3: ये हेलो आकाशवाणी आती है
2: हाँ
3: तो जामे अपनी तरफते, और जैसे पाक में अमेरिका और ईरान में युद्ध हो रहा है तो पब्लिक के दिमाग में डालू, पब्लिक के सुझाव लू
2: हाँ
3: उसे।
2: उस तरह का कार्यक्रम जो हर दिन 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में गीत, बात और SMS आपका कार्यक्रम होता है, तो वहाँ इसी तरीके के आप अपना SMS कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वो अनाउंसर जो कार्यक्रम को दे रहा है वो उस बात को लेगा, कुछ गाने बजाएगा, तो वो उस तरह का कार्यक्रम है। हेलो आकाशवाणी में थोड़ा दूसरी तरह का प्रोग्राम है वो।
3: जैसे मौसम मौसम की और जानकारी और क्षेत्रीय जानकारी लेते हैं, जैसे वैसे बस सारी जानकारी की बात करो।
2: हाँ वो
1: हाँ,
2: बात आपका
1: देखिए त्यागी जी, मैं
2: सुझाव।
1: बताऊं आपको कि आप जब SMS करते हैं फरमाइश करने के लिए, तो
3: जी
1: आप उस SMS में अपनी बात भी रख सकते हैं, जैसे हमारे जो उद्घोषक हैं ऑन ड्यूटी, वो आपकी बात को उस कार्यक्रम में उठाएंगे।
3: तो छूटा कौन है।
2: जी, आपका भी ये भी सुझाव है, लेकिन
3: हाँ
2: इस तरह कोई संभव हुआ तो देखेंगे, लेकिन
3: हाँ
2: हर तरह का प्रोग्राम एक ही उसमें नहीं हो सकता है, तो मैंने फिर कहा, आपने 12 बजे जो हमारा गीत, बात और SMS है, उस
3: हाँ
2: कार्यक्रम का
3: जी
2: उद्देश्य ही है कि आप SMS के माध्यम से किसी बात को रखें, किसी थीम को उठाएं, कोई अपनी चर्चा करें और फिर उसके बाद गाना सुनें, तो गीत, बात और SMS ही उस कार्यक्रम का नाम ही ये रखा गया है कि उस पर कुछ बातें की जा सकती हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई हो, हमारे जीवन के पक्षों से जुड़ी हो, समसामयिकता से जुड़ी हुई हो, हमारे आसपास जो घटित हो रहा है दिन प्रतिदिन में उससे जुड़ी हुई हो, तो उनको आप संवाद कर सकते हैं, आप अपने अनाउंसर से बात कर सकते हैं।
1: जी जी
2: जी
3: जी तो 10:30 और 11:30 बजे का अपना समय रख देंगे साज आवाज का।
1: जी
2: जी जी चलिए, उस पर भी हम सुझाव पे भी हम काम करेंगे।
1: सिंह साहब, इस तरह से कार्यक्रम की रोचकता और बढ़ने की आशा है।
2: जी जी जी
3: जी
2: आपने फोन किया, इसके लिए धन्यवाद भैया।
1: हेलो,
4: नमस्कार।
1: नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए और अपनी बात रखें।
2: थोड़ा सा परिवर्तन है जो है आपके पत्र, आपके फोन से, चूंकि पत्र कम आते हैं अब, तो अब कॉल

0: के साथ आपकी ये बात हम कर रहे हैं उसमें, है ना? तो बात वही है।
1: मैं
0: जी जी बताइए, क्या रखते हैं प्रतिक्रिया आकाशवाणी मथुरा के कार्यक्रमों के बारे में आप?
1: ऐसा है कि भगवान की लीलाओं के बारे में आपके यहाँ से काफी कुछ सुनने को मिलता है जो कि
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: लाभदायक शिक्षा पड़ गए।
0: जी
1: आप गीता पर आधारित ये कार्यक्रम भी चलाएं यहाँ पे अपने यहाँ
0: जी
1: कम से कम 20 मिनट का।
0: चलिए ठीक है, आपने कार्यक्रम भी बताया, कार्यक्रम की अवधि भी बताई, थीम भी बताई, तो इस पर भी बात करेंगे क्योंकि गीता भी ब्रज से जुड़ी हुई चीज
1: हाँ वो भी
0: है।
1: प्रशंसनीय है कि उसकी भी बहुत वो है।
0: हाँ
1: और दूसरा ये है कि जो चिंतन बिंदु है
0: हाँ
1: इसका समय भी कम से कम 10 मिनट करें क्योंकि ये इनमें बातें हैं आपके यहाँ से जो आती है और
0: देखिए
1: सरल तरीके से आप बताते हैं लोग परलोक दोनों सुधर जाते हैं।
0: जी, लेकिन चिंतन बिंदु जैसी बात, गंभीर बात अगर बहुत लंबी होगी तो शायद कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई,
1: ये इसमें
0: तो
1: बड़ी
0: उसका जो
1: धार्मिक बात
0: समय
1: है इसमें हमें
0: हमारे,
1: समझना होता है।
0: हाँ पुराने लोगों ने शायद बहुत सोच समझ के रखा है कि गंभीर बात, कि कई बार हम देखते हैं कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ एक बाकी के होते, मंत्र भी जो है दो लाइनों के होते हैं, तो चिंतन बिंदु जैसी बात अगर हम बहुत लंबी करेंगे तो शायद उसकी सार्थकता नहीं रहेगी। गंभीर बात को संक्षेप में थोड़े उसमें ही सुन लिया जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा ठीक है, बाकी आपका सुझाव है, हम उसको अमान्य नहीं करते।
1: चलो गीता पे कम से कम 20 मिनट का
0: चल
1: आपने
0: हाँ,
1: बताया।
0: गीता पे कोई विशेष बात हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे, चाहे वो गीता महोत्सव पे हो, चाहे गीता के बारे में हो, या गीता के उपदेशों के बारे में हो, उस पे
1: धन्यवाद
0: एक
1: जी।
0: कार्यक्रम हम जरूर जल्दी से
1: जी
0: आपके बीच में लेके आएंगे।
1: आपने फोन
0: ओके
1: किया, बहुत
0: नमस्कार
1: बहुत धन्यवाद।
0: साहब।
1: हेलो,
2: हेलो
1: नमस्कार,
2: नमस्कार,
1: कौन साहब बोल रहे हैं?
2: हम विपिन कुमार बोल रहे गांव छौड़ी से। और आप
1: जी
2: कैसे
1: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
2: हैं? हम भी बढ़िया हैं, बैठे हैं आपसे बातें कर रहे हैं।
1: जी विपिन जी, आज हमारे कार्यक्रम में सिंह साहब हैं, आप क्या सुझाव, क्या शिकायत और क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कार्यक्रमों के बारे में?
2: देखिए सर, कार्यक्रम आपके सभी बढ़िया है। जो कल सुबह 9 बजे आता है ना, 9:30 पर
1: जी
2: जरा जरा रूप सिंह जी प्रस्तुत करते हैं, कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब रहता है, अध्यात्मिक बहुत ही अच्छा लगता
0: अच्छा,
2: है।
0: आकाशवाणी के 90 साल होने के संदर्भ में हमारी कुछ लोगों से, पुराने लोगों से बातचीत हो रही है, पहले भी सुनवाई थी, 8 जून को आकाशवाणी अपने 90 साल का सफर पूरा कर लेगा, तो ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो हमें भी सुन के अच्छा लग रहा है
1: जी
0: देवराज जी।
1: बिल्कुल, अगर श्रोताओं को
2: हमको
1: अच्छा लगता है तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है।
2: जी हमको ये बहुत ही अच्छा लगता है। कल के कार्यक्रम में तो बहुत ही उनकी आवाज बहुत ही मधुर थी, बहुत हंसी आ रही थी
0: हंसी आ रही थी
1: जी,
2: सुरीली आवाज थी, बहुत ही अच्छी
1: जी
2: थी,
1: सिंह
2: ऐसे
1: साहब,
2: लगने
1: उस कार्यक्रम में
2: लगता है।
1: मनमोहन गुप्ता जी थे।
0: मनमोहन गुप्ता अभिलाषी जी हमारे बात कर रहे थे, और अगले गुरुवार को हम, हमारे पूर्व कार्यक्रम प्रमुख रहे, निदेशक रहे, सेवानिवृत्त हो गए हमारे अपने राम गोपाल जी, उनसे बातचीत सुनवाएंगे, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड की हुई रखी है, तो आप सुनिएगा अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को 9:30 बजे।
1: जी विपिन जी, और अन्य कार्यक्रमों के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे जो रात के समय पे 8:30 पे एक ही फिल्म से आता है जो कार्यक्रम, उसमें हम थोड़ा बदलाव करना चाहेंगे
0: बताओ।
2: क्योंकि उसमें 3 गाने सुनवा दिए जाते हैं पर फिल्म फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। ऐसे गाने को रोक दिया जाए, थोड़ा फिल्म के बारे में बताया जाए, उसके बारे में दिया जाए जानकारी।
1: जी विपिन जी, अगर आप नियमित रूप से कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको जरूर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इस तरह की जानकारी और फिल्म के बारे में अवश्य सुनने को मिली होंगी, तो आप लगातार इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, आपको गीतों के साथ साथ फिल्मों के बारे में भी जरूर जानकारी दी जाएगी।
2: और ये गुरुवार के दिन 12 बजे कार्यक्रम आता है सिम से हेलो डॉक्टर, ये भी हमको बहुत पसंद आता है।
0: ये भी अच्छा लगता है आपको, इसका मतलब जो उपयोगी जानकारियां हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें
1: जी
0: भी सुन के लग रहा है कि हमारे श्रोता हमारे प्रयासों को एक तरह से मान्यता दे रहे हैं देवराज,
1: फायदा भी उठा रहे हैं।
0: तो इसी तरह आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहिए, कुछ सुझाव भी देते रहिए, और हर तरह की प्रतिक्रिया का हम स्वागत करते हैं क्योंकि इसी प्रतिक्रिया से देवराज जी हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है।
1: जी
0: बाकी श्रोताओं के जो भाव हैं, श्रोताओं की जो सुझाव हैं, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
1: बिल्कुल करते रहेंगे, और अब लेते हैं अगला फोन।
0: जी
3: हेलो
1: नमस्कार।
3: नमस्कार, आपके पत्र आपके फोन।
1: जी इस कार्यक्रम का जो अब शीर्षक रखा गया है वो है श्रोता।

0: की बात फोन कॉल्स के साथ, तो
1: अच्छा
0: आप अपनी बात को फोन कॉल के माध्यम से इस कार्यक्रम में रख सकते हैं।
1: ठीक है सर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।
0: पहले परिचय
1: जी
0: दे दीजिए सर।
1: मैं पंचम लाल चतुर्वेदी बसवा जिला दौसा से बोल रहा हूँ।
2: जी
0: जी
2: पंचम
0: स्वागत
2: लाल जी,
0: है।
2: स्वागत है आपका।
1: हाँ, मैं बहुत दिनों से आपका श्रोता रहा हूँ, 1978 से।
2: जी जी ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे उस समय के श्रोता हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। सफर सुहाना चल रहा है,
1: और
2: बताइए।
1: आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी मथुरा का प्रसारण मीडियम वेव पर होता था, और वो हमारे क्षेत्र में 1978 से
0: जी
1: 196.1 मीटर पर सस और सरसराहट युक्त आवाज में मिलता था।
0: जी
1: तो उससे हमको कार्यक्रम साफ सुनाई नहीं दे पाते थे। इस संदर्भ में मैंने आपसे कई बार निवेदन किया तो मुझे यही जवाब मिला कि हमारे केंद्र का ट्रांसमीटर 1 किलोवाट का है और इसकी प्राथमिक
2: अब की बात करिए। अब पंचम लाल जी
1: की स्थिति है सर कि मैंने फिर इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और मेरे लेटर पर कार्रवाई हुई, और FM 10 किलोवाट के प्रसारण जब शुरू हुए तो ये मुझको सुबह के समय कमजोर स्थिति में मिलते थे।
2: अच्छा।
1: और उसके बाद ये अप्रैल 2023 से इसके प्रसारण जो है बिल्कुल मिलना बंद हो गए। कारण था आपके ट्रांसमीटर में तकनीकी खामियों।
2: अभी अभी आप हमारे कार्यक्रम सुन पा रहे?
1: केवल ऑनलाइन सुनते सर, बिल्कुल नहीं मिल रहे।
2: अच्छा, ऐप पे आप सुनाई दे रही है आपको?
1: ऐप पे देते हैं, बाकी
2: आप हमारे कार्यक्रमों को ऐप के माध्यम से सुन पा रहे हैं। ट्रांसमीटर वाली फ्रीक्वेंसी आप तक अभी नहीं पहुंच पा रही, यही कहना चाह रहे हैं ना?
1: हाँ, यही है सर। और ये अप्रैल 2023 से आज तक जस की तस बनी।
2: कोई बात नहीं, अब आपकी जो शिकायत है, देखो अब तो हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, और इसको रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, और इस पे जो प्रतिक्रिया जो टेक्निकल हेड या टेक्निकल टीम जो हमारी सुझाव देगी उनका जरूर हम आपको करके इसी कार्यक्रम में हम आपसे बात फिर करेंगे, ठीक है? बाकी अभी आप जुड़े चूंकि समय कम है, चूंकि हाँ आप हमसे जुड़े, कार्यक्रम में प्रतिक्रिया दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं भी आपका आभारी रहूंगा।
2: जी प्रणाम,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: तो सिंह साहब, हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स लगातार आते रहे
2: जी,
0: और श्रोताओं ने अपनी बातें भी रखी, कुछ शिकायतें भी थी जिन्हें अब हम आगे दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का समय संपन्न हो रहा है।
2: और तो बाकी आप नंबर आप बता सकते हैं किस वाले फोन नंबर पे बात कर सकते हैं?
0: तो हम अपने श्रोताओं को बता दें, हमारा जो फोन नंबर है 25 30 135 है। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाकर हमें फोन कर सकते हैं, और फोन करने का जो दिन है वो है शुक्रवार, समय 12:30 से।
2: तो अभी तो सिर्फ इतना ही वक्त के श्रोताओं से हम इजाजत लें।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।

श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ थे ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल सुरों में। आमिर खुसरो के शब्दों को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है नक्श लायलपुरी ने, संगीत है खयाम का। इस गीत को ले रहे हैं फिल्म खानदान से।

0: खानदान फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वरों में, मजबूर फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: मैं लोगों के प्यार के किस्से सुनकर हंसता

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में आपने सुना मजबूर फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत

0: छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी

0: में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने कहा है

कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

0: दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

0: हॉलिडे, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह के स्वर में। गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत था प्रीतम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन, डगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसक मसक के क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: प्रदीप साहनी ने, संगीत था सलीम सुलेमान का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: प्लीज जल्दी,
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
1: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आजा नचले, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान, माधुरी दीक्षित और साथियों के स्वर में। गीत को लिखा था पीयूष मिश्रा और

सैटेलाइट शंकर, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना रोमी और बॉम्बे रॉकर्स की आवाज़ों में। गीत को लिखा था कुमार ने, संगीत था तनिष्क बागची का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत नंदिनी श्रीकर और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में।

मोहित चौहान की आवाज में आपने सुना तनु वेड्स मनु फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था राजशेखर ने, संगीत था कृष्णा का। इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर अपनी दूसरी सभा में पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। साथियों, आज है 31 मई। आज के दिन हम मनाते हैं विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस लोगों को तम्बाकू सेवन से होने वाले जानलेवा नुकसान के प्रति जागरूक करने और उन्हें तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण है तम्बाकू के सेवन से कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और दिल की बीमारियां जैसे गंभीर खतरे पैदा जो होते हैं वो तम्बाकू से होते हैं। दुनिया भर में तम्बाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इस दिन लोगों को इन्हीं बीमारियों के प्रति सचेत किया जाता है। वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तम्बाकू के सेवन से होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद ये प्रस्ताव पारित करने के बाद हर साल 31 मई को यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सब मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी नशा हो, इससे शरीर,

स्वास्थ्य, पैसा, समय सब कुछ खर्च होता है। हमें इन सब से बचना है। ये कुछ जानकारी थी तंबाकू के बारे में। और अब एक ऐसा ही रूपक आपको सुनवाते हैं जीवन का अवसान। यह रूपक तंबाकू निषेध दिवस पर आधारित है। इसके लेखिका हैं उषा शर्मा, वाचन कर रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित और ज्योति शर्मा। तो आइए सुनते हैं रूपक जीवन का अवसान।

0: Maybe he's gonna shoot her now. But then I आगे क्या होगा?
1: मन का गहरा खालीपन है और अकेला हूँ मैं, जैसे कोई निर्जन वन है और अकेला हूँ मैं, जिसको सुनकर रातों को अक्सर मैं जाग गया हूँ। मेरा अपना ही क्रंदन है और अकेला हूँ मैं।
2: शुभ नाम बताएं अपना।
3: धनलो।
2: आप कहाँ से आए हैं?
3: गांठौली गोवर्धन के पास।
2: तो आप किस बीमारी से ग्रसित हैं?
3: कैंसर है। कैंसर
2: कहाँ पर है? कैंसर आपको
3: गले पे ऑपरेशन भाई।
2: आप क्या वजह मानते हैं जो आपको ये कैंसर हुआ?
3: 20 साल से 3 तबंडल पीवे और रोज और 4-5 खावे और रोज ना 3 लाख रुपया पीवे मैं अब तक।
2: क्या मतलब आपने जी भर के धूम्रपान और तम्बाकू चबाना सेवन किया?
3: हाँ हाँ।
2: आज आप इस अवस्था में हैं तो इस संबंध में डॉक्टर क्या कहते हैं?
3: डॉक्टर जो कहते हैं तम्बाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, बीड़ी मत पियो।
2: तो क्या आपका इस संबंध में कोई ऑपरेशन भी हुआ है?
3: ऑपरेशन हुआ 30 साल से उनको। मैं तो सेवन तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे गले रुपये लग दो, जीवन खराब है, वो छोटे छोटे बच्चा छोड़ दो।
4: मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और ज्ञान का भंडार है। उसे संसार के अन्य प्राणियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का सम्मान प्राप्त है। साथ ही अन्य मानवीय गुणों धैर्य, क्षमा, दया, साहस इत्यादि ने सोने में सुहागे का काम किया है और इस संसार को दिव्यता प्रदान की है।
5: दूर तक दृष्टिपात करने पर आज देखने में आ रहा है कि सृष्टि के सबसे समझदार प्राणी इसी मनुष्य ने अपनी थोड़ी सी नासमझी के कारण इन्हीं दिव्य गुणों को दाव पर लगा रखा है। उसने कुछ ऐसी विषैली वस्तुओं का सेवन प्रारंभ कर दिया है जो उसे उसी प्रकार जीवन के अवसान पथ पर ले जा रही हैं, जैसे एक विशाल वट वृक्ष में दीमक का प्रवेश।
4: बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक खरगोश किसी वृक्ष के नीचे बैठा था, यकायक उसकी पीठ पर कुछ आकर गिरा। वो चिल्लाते हुए भाग निकला। ईंटें आई, पत्थर आए, भागो भागो रे भाई। इसे सुनकर जंगल के अन्य जानवर भी अपने बचाव के लिए भाग निकले। वास्तव में ये एक पत्ता था। इस एक पत्ते ने जंगल में हलचल मचा दी। ठीक इसी प्रकार आज एक पत्ते ने सारे संसार में हलचल मचा रखी है और अधिकांश मानव समाज को अपनी चपेट में ले रखा है।
5: जी हाँ, ये कहानी नहीं सच्चाई है और वो पत्ता है तंबाकू का पत्ता। अपने विभिन्न रूपों से मानव को आकर्षित करके इस पत्ते ने भारत की आबादी के बराबर संसार के लगभग 125 करोड़ लोगों को अपने आगोश में ले रखा है।
4: स्त्रियां और बच्चे भी इसके प्रभाव से बच नहीं सके हैं। यदि अपने देश की बात करें तो यहाँ 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में 57% पुरुष और लगभग 10% महिलाएं किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू से निर्मित धूम्र तथा निर्धूम पदार्थों में अकेले भारत में लगभग 43 लाख टन तंबाकू खप जाता है। यहाँ तंबाकू की खेती लगभग 4,50,000 हेक्टेयर भूमि पर होती है।

0: और लगभग 1 खरब बीड़ियां और लगभग 10 अरब सिगरेटें प्रतिवर्ष निर्मित होती हैं।
1: तंबाकू से बने धूम्र रहित पदार्थों में सुपारी, जर्दा, गुटखा और खैनी शामिल हैं। इन सभी में घातक विष निकोटीन की मात्रा सर्वाधिक है। इसके अलावा इन पदार्थों में कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, कार्बोलिक एसिड तथा मार्श आदि पदार्थों का मिश्रण होता है। साक्ष्यों द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि इस मिश्रण में 29 ऐसे पदार्थ हैं जिनसे कैंसर होने की संभावना रहती है।
0: कैंसर के अलावा फेफड़ों के रोग, हृदय रोग, दमा, स्नायु दौर्बल्य, मंद पाचन शक्ति और स्मृति में कमी भी इसके परिणाम हैं। इसके सेवन से अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, साहस और आत्मबल की कमी से व्यक्ति अवसान पथ का पथिक बन जाता है। जानकारी देते हुए आप हैं डॉक्टर वीके सिंह।
2: तम्बाकू का उपयोग चाहे वो पीने की दृष्टि से धूम्रपान की तरीके से या चबाने वाले तम्बाकू के इस्तेमाल से दिनों दिन बढ़ रहा है। इसके परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। मरीजों में कई तरीके की व्याधियां देखने को मिल रही हैं। वो व्याधि बहुत सामान्य से लेकर बहुत घातक, यहाँ तक कि प्राण घातक भी मिलती है। जो लोग तम्बाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से आधे लोग तम्बाकू से होने वाली बीमारियों की वजह से अपनी नेचुरल जो उनकी उम्र है उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जितने भी स्टडीज हैं वो बताती हैं। इसलिए तम्बाकू को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। तम्बाकू से सबसे पहले मुंह में नॉन कैंसरस जो बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, वो बनती हैं, जैसे कि हम सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं। इन सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस की वजह से उनका खुलना प्रॉपर नहीं हो पाता है, दांतों पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है, उनमें टैनिंग होने लगती है, काले भद्दे हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी उसमें लगती हैं। जहां तक कैंसरों की बात है, कैंसर गले को, गाल को, जीभ को, तालू को और यहां तक कि स्वरयंत्र को प्रभावित करता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। अगर स्टेज बढ़ जाती है तो ट्रीटमेंट असंभव हो जाता है, अन्यथा ट्रीटमेंट बहुत खर्चीला और अपने मुंह को विकृत बनाने वाला हो जाता है, जिससे कि जीवन जो है बिल्कुल नरक के समान हो जाता है।
1: जिस प्रकार अंग्रेजों ने चाय के पौधे को पेय पदार्थ के रूप में संसार के सम्मुख ला दिया, उसी प्रकार तंबाकू को लाए पुर्तगाली। सन 1600 ईस्वी के बाद से भारत में तंबाकू का उत्पादन इतना बढ़ गया कि आज ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है।
0: तंबाकू की एक प्रमुख देन बीड़ी है। इस उद्योग का विकास भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आरंभ हुआ। साथ ही सिगरेट, सिगार और चुरुट आदि भी नए कलेवर के साथ सामने आए। इनका कागज एक विशेष घोल से बनता है जो जलने पर मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को धीरे धीरे प्रभावित करता है।
1: किशोरावस्था में मित्रों का साथ, सजना संवरना, बाहरी तड़क भड़क से वे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। गलत सोहबत के कारण किशोर दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते हैं। किशोरों में तंबाकू का प्रचलन इसी का दुष्परिणाम है।
0: इस क्षेत्र में बालिकाएं भी पीछे नहीं हैं। विश्व के लगभग 151 देशों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि बालिकाओं में तंबाकू सेवन की आदत में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके लिए फिल्में, धारावाहिक और व्यावसायिक कंपनियों का प्रचार प्रसार भी एक प्रमुख कारण है।
1: यदि अपने देश की बात करें तो यहाँ लगभग 4 करोड़ महिलाएं तंबाकू सेवन से ग्रसित हैं। ये बात और भी भयावह है कि महिलाओं द्वारा इसके सेवन से भावी पीढ़ी का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। इनसे उत्पन्न बच्चे 8% तक कम वजन लेकर संसार में आते हैं, जिनमें शारीरिक विकास के साथ ही गला, श्वास और हृदय रोगों के संक्रमण की संभावना बनी रहती है। ऐसे कुपोषण ग्रस्त बच्चों के अल्पायु होने पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसी माताएं
0: उठाकर बीड़ी सिगरेट के धुएं का जहर ढा रही अपनी ही औलाद पर कहर।
1: विश्व के लगभग 10 लाख व्यक्ति तंबाकू सेवन से मृत्यु का ग्रास बनते हैं। धूम्रयुक्त तंबाकू की अपेक्षा निर्धूम तंबाकू उत्पादों का बढ़ता प्रचलन

0: और भी भयावह है। मुंह के 90% कैंसर चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, गुटखा, खैनी आदि के कारण होते हैं। ये मानव को नारकीय जीवन बिताने को विवश कर देते हैं। इसी संबंध में प्रकाश डालते हुए आप हैं डॉक्टर एस के शर्मा।
1: तम्बाकू जनित कैंसर होते हैं, तम्बाकू का किसी भी प्रकार का प्रयोग, चाहे वो मंजन के रूप में हो, चाहे धूम्रपान के रूप में हो, चाहे गुटखा और पान मसाला और पान खाने के रूप में हो, तो उनमें से आप देखोगे 50 से 60 लोग कैंसर से ग्रसित सिर्फ इसलिए हुए हैं कि वे तम्बाकू का प्रयोग करते थे। सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान और सबसे घातक बीमारी जो तम्बाकू के प्रयोग से होती है वो है कैंसर। तम्बाकू में या सिगरेट में या बीड़ी में, इसके धुएं में करीब 200 ऐसे तत्व हैं घातक जो कि कैंसर को जन्म देते हैं। इसके अतिरिक्त ये खून में मिल जाता है, इसका धुआं या इसका जो रस मिल जाता है वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड के जरिए फिर वो ब्लड जो है गुर्दे में छनता है, तो गुर्दे में और पेशाब की थैली का कैंसर भी इससे हो जाता है। देखा तो यहाँ तक गया है कि जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं या जिनके पति धूम्रपान करते हैं, तो वो धुआं जो निकलता है बीड़ी सिगरेट से, उस वातावरण में रहने वाली ये महिलाएं और बच्चे भी, उनको भी ये नुकसान हो जाता है।
2: कुछ लोग फैशन के रूप में तो कुछ लोग थकान उतारने या रिलैक्स के नाम पर धूम्रपान करते हैं, तो कुछ बड़ों की आड़ में इसका चस्का लगा बैठते हैं।
0: कुछ गम में पीते हैं, पीकर खुशी मनाते हैं, कुछ दम भर पीते हैं, फिर दमे से छटपटाते हैं।
2: गलतियां मनुष्य से होती हैं, इनका परिणाम मानव को सीख भी देता है। आज तंबाकू का प्रयोग करना मानव की एक भूल ही है। इस भूल का परिणाम स्वास्थ्य, चरित्र और धन हानि के रूप में हमें सीख भी दे रहा है। इसे अलविदा कहने में ही समझदारी है।
0: धूम्रपान है दुर्व्यसन, मुंह में लगती आग, स्वास्थ्य सभ्यता धन घटे, कर दो इसका त्याग।
2: कुछ समाजसेवी संस्थाएं मानवता के नाम पर तंबाकू प्रयोग की रोकथाम के काम कर रही हैं। सन 2008 में पूज्य बापू की जयंती पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित किया गया है। पिछले वर्षों में कुछ राज्यों और केंद्र शासित राज्यों द्वारा तंबाकू युक्त गुटखों और जर्दा मसालों को प्रतिबंधित किया गया है।
0: अब तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर चित्रात्मक चेतावनी में तंबाकू प्रयोग से प्रभावित होने वाले मानव अंगों को दर्शाना और लाल रंग से धूम्रपान जानलेवा है लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
2: अभी हाल ही में भारत सरकार ने तंबाकू निर्मित उत्पादों पर छपी चेतावनी को अधिक ग्राफिकल बनाने की घोषणा की है। अभी तक पैकेट के 40% भाग पर चेतावनी लिखने की बात थी, किंतु सामाजिक विद्वानों का मानना है कि इस चेतावनी को 85% भाग तक लिखा जाना चाहिए। ये कहना समीचीन होगा कि हर स्थान पर धूम्रपान तथा थूकने पर प्रतिबंध के रूप में कुछ अर्थदंड भी निश्चित किया गया है।
0: इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ अभियोजक श्री अशोक कौशिक।
3: देखिए, भारत सरकार ने ये देखे हुए कि सिगरेट और तंबाकू उत्पाद का इतना प्रयोग बढ़ता जा रहा है, मुंह के कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, इसको प्रतिबंधित करने के लिए 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार और वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम अधिनियम एक बनाया जो 2003 से लागू किया गया है। उसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू का उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे पब्लिक ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हवाई अड्डे हो, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, उन सब पे सरकार ने ये कानून बनाया है कि सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई धूम्रपान नहीं करेगा, ना ही कोई तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करेगा, और इसके उल्लंघन करने पर 2000 रुपए सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ साथ ये भी है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसके 100 मीटर के व्यास के अंदर, उसके बाहर 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी तंबाकू का ना इस्तेमाल करेगा, ना ही बेचेगा, ना ही धूम्रपान करेगा।

0: अगर कोई ऐसा करता पाया जाता उसके ऊपर भी 2000 रुपए पेनल्टी का प्रावधान किया गया। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया है इसमें स्पष्ट प्रावधान किया है कि 18 वर्ष के कम आयु वाले व्यक्ति को ना तो सिगरेट बेची जाए ना ही तंबाकू का उत्पाद बेचा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बेचता है तो उसके ऊपर धारा 6 में मना किया गया है, प्रतिषेध है, और उसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपए के दंड का प्रावधान किया गया है। जो लोग जगह जगह गुटखा या तंबाकू खाकर थूकते हैं उसके लिए तो चूंकि तंबाकू के उत्पाद को ही उन्होंने उसका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित किया है तो जो लोग खाके थूके उसके लिए तो इस एक्ट में प्रावधान है। इसके अलावा भी 290 IPC के अंदर पहले से ही प्रावधान है कि जो कोई इस तरह गंदगी करेगा, न्यूसेंस फैलाएगा, उसके ऊपर भी उन्होंने पहले से दंड का प्रावधान किया हुआ है। इसके लिए IPC के 290 सेक्शन में 200 रुपए का दंड का प्रावधान किया गया है।
1: तंबाकू से उत्पन्न रोगों की रोकथाम पर भारत सरकार प्रतिवर्ष लगभग 26,000 करोड़ रुपए भी व्यय कर रही है, किंतु जैसे जैसे इसके प्रयोग की रोकथाम के उपाय किए जाते हैं ये आदत सुरसा के मुख की तरह फैलती जा रही है। खुलेआम तंबाकू के प्रोडक्ट बिक रहे हैं जिन पर कोई रोक नहीं है।
2: इस खतरे को नजरअंदाज करना सिर्फ भयानक ही नहीं आत्मघाती भी होगा। इसके लिए आवश्यकता है जन जागरण की। जो वस्तु जहां खोई है वहीं खोजने पर मिलेगी। जनता ने इसे अपनाया है तो उसके प्रयास से ही इसका त्याग संभव है। मूल रूप से तंबाकू के उत्पादन पर ही रोक लगनी चाहिए।
1: तंबाकू के खेत में यदि पैदा होता अन्न, पेट हजारों के भरे, तन मन रहे प्रसन्न।
2: नेपोलियन का कथन है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। यदि हर व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ तंबाकू त्यागने के लिए तत्पर हो जाए तो ये अभियान निश्चय ही सफल हो जाएगा। यदि मानव स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चाहता है तो उसे बदलना ही होगा, अन्यथा परिणाम सामने है ही। व्यक्तिगत रूप से समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, शासन के कानूनी सुधारों द्वारा और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उठाए जा रहे कदम अवश्य ही मानव को इस संकट से मुक्ति दिलाने में कारगर साबित होंगे।
1: साथ ही हम लोग किसी विशेष पर्व, जन्म दिवस आदि के अवसर पर तंबाकू प्रयोग न करने का संकल्प लें, स्वयं को व्यस्त रखें, मेहमानों का स्वागत तंबाकू निर्मित पदार्थों से न करें, अपने साथियों को प्रेरित करें कि वो तंबाकू के सेवन से बचें।
2: समाज सेवी संस्थाएं विचार गोष्ठी, काव्य सम्मेलन, नुक्कड़ नाटक आयोजित कर तंबाकू के दुष्चलन को रोकने में कारगर सिद्ध हो सकती हैं। विद्यालय स्तर पर तंबाकू के प्रयोग से बचाव हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाना चाहिए।
1: इसके अलावा तंबाकू के प्रचार प्रसार पर कानूनी लगाम लगाई गई है। धारावाहिक, फिल्म या होर्डिंग्स के माध्यम से तंबाकू उत्पादों का प्रचार अब संभव न होगा। साथ ही तंबाकू उत्पादों पर 85% तक चेतावनी लिखे जाने की अनुशंसा सामाजिक शुभचिंतकों द्वारा की गई है जिसे सरकारी स्तर पर मान्यता दे दी गई है।
2: ठोस कदम तो यही होगा कि विभिन्न माध्यमों से आम जन को तंबाकू सेवन के गंभीर परिणामों से अवगत कराना होगा। प्रगतिशील देशों में प्रचार और प्रसार के कारण इंग्लैंड में लगभग 20 लाख, अमेरिका में लगभग 5 करोड़ लोगों ने धूम्रपान का परित्याग किया है।
1: ये एक आशा की किरण है, इसलिए तंबाकू की इस विष बेल को समूल नष्ट करने के प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। उस प्रवाहित नदी के समान जो नहीं देखती कि सागर कितनी दूर है।
2: कब से देख रहे थे अपनी आंखों ये बर्बादी, थोड़ी सी नासमझी ने मानव की ये दुर्दशा बना दी।
1: अब तम का अवसान हुआ, नई चेतना जाग रही, ज्ञान रश्मियां लगी फैलने, ये बीमारी भी भाग रही।

घाटा अपना भर लेंगे। कर तंबाकू का निषेध, बचकर रहेगी मानव की जान, अब इसके जहर से नहीं होगा।

दोस्तों आप सुन रहे थे रूपक जीवन का अवसान। इसके लेखिका थी उषा शर्मा, वाचन कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित और ज्योति शर्मा।

साथियों, एकीकृत बाल विकास योजना की जो उपलब्धता है वो सरकार के द्वारा समुचित की जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा समुदाय, ये बात ध्यान रखता है कि आम जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करें। इस योजना के तहत बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, माताओं को, 16 से 44 वर्ष की महिलाओं को लक्षित करती है। यह योजना का उद्देश्य लक्षित समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा में सुधार करना है। छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती माताओं के लिए एकीकृत सेवाओं का पैकेज प्रदान करना, पूरक पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा, इसका जो उद्देश्य है वो कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा, बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास की आवश्यकताओं को केंद्रित करना है। इसके जो मुख्य प्रकार हैं, शारीरिक, संज्ञात्मक, भाषाई और सामाजिक भावनात्मक, जीवन के स्वास्थ्य और सीखने की मजबूत नींव के लिए प्रत्येक प्रकार के लिए महत्वपूर्ण है। सही सहायता प्रदान करने के लिए इन विकासात्मक चरणों को समझना बहुत आवश्यक है। बाल विकास को मनोवैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर 7 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। ये चरण हैं जन्म से लेकर किशोरावस्था, अंत तक बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को यह दर्शाता है। ये कुछ जानकारी हुई एकीकृत बाल विकास योजनाओं के बारे में।

और इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वाले साथियों को हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा।

सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। 6:15 पर आप सुन सकते हैं ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मृणालिनी दीक्षित। आप सुनेंगे चर्चा हरी खाद का इस्तेमाल और विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर। इसके अलावा आप सुन सकते हैं मनभावन क्रम में अपनी ही पसंद के लोकगीत। संध्या वंदन कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 6:45 पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में 7:05 पर आप सुन सकते हैं ब्रज काव्य मकरंद। प्रस्तुत करेंगे पंडित राकेश कुमार शास्त्री। प्रादेशिक समाचार 7:18 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से लेकरेंगे। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का आप आनंद लेंगे रात्रि 7:31 पर। 8:00 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। एक बार पुनः देशगान हम आपको सुनवाएंगे 8:20 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। आज आप सुनेंगे निकाह फिल्म के कुछ गीत। 9:15 पर आप सुन सकते हैं सुहाने तराने। 10:00 आप सुनेंगे रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकर आएंगे। आपको एक बार पुनः स्मरण करा दें 6:15 पर आप सुनेंगे अपनी ही पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। पंडित राकेश कुमार शास्त्री प्रस्तुत करेंगे ब्रज काव्य मकरंद। फरमाइशी फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:31 पर कार्यक्रम श्याम सुहानी के तहत। और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात्रि 8:00। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर निकाह फिल्म को कुछ गीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देश गान।

आप सुन रहे थे देशकांत, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे अपनी ही पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मृणालिनी दीक्षित।

प्रजगामीन कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को मरालनी बहन की राम राम। भैया आज तो आपको पसंदीदा कार्यक्रम है मन भावन गीत संगीत के आनंद की तो कछु बात ही और है, लेकिन थोड़ी बहुत पहले चढ़ी चर्चा कर लें। भैया हमारा मुख्य उद्देश्य है खेती बाड़ी का काम, चूँकि संध्या को प्रोग्राम हमारे किसान भैयान के काजे हुए हैं। खेती की बातन में माटी की जांच है, मिट्टी की देखभाल है, वही तरह से भैया हरी खाद की उपयोगिता है, बाकी इस्तेमाल से कितना लाभ हमारे फसल के काजे हुए जो हमें देख वेख मिले हैं। हरी खाद भैया कहा जाए कि उगाई गई उन तेजी से बड़े वाली फसल, विशेष तौर से दलहन को कहा जाए जिन्हें फूल आवे थे पहले ही हम खेत में जोत कर मिट्टी में मिला दे में, जाको मुख्य उद्देश्य हो कि मिट्टी में पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति करना और भूमि को उपजाई बनाना। जाके प्रयोग से भैया हरी खाद वाली दलहनी फसलन की जड़ों में राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया हुआ है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में स्थिर कर देवे है, जैसे फसल में मुफ्त में नाइट्रोजन मिल जावे है, वायु का संचार बढ़े, सूक्ष्म जीवन को बढ़ावा मिले, जमीन के सुधार में सहायक रहे, पोषक तत्वों की आपूर्ति भी हरी खाद के प्रयोग से है जावे, खरपतवार और रोगों की रोकथाम के काजे हम हरी खाद का प्रयोग करें हैं और लागत में भी कमी आवे है। भैया हरी खाद के काजे आमतौर पर तेजी से बढ़े वाली कोमल और तनों वाली फसलों का चुनाव किया जावे ताकि वे आसानी से सड़ सकें। अब प्रयोग करवे को सही तरीका हो भैया बुवाई के समय गेहूं या रबी फसल की कटाई के बाद खेत की तैयारी करके ढेंचा या सनई के बीच छिटक कर कतारन में बो दें, पर बुवाई के 40 से 50 दिन बाद फूल आवे थे पहले जब फूल में पर्याप्त हरा भाग और पत्तियां हुए तो बाय मिट्टी में पलटवे वाले हल या रोटावेटर से खेत में जोतकर मिट्टी में दबा दें, क्या तरह से हम हरी खाद का प्रयोग कर सकें जो हमारे फसल के काजे बहुत ही लाभकारी रह गए हैं। ये तो रही भैया आज की चर्चा। अब आप देख रहे होंगे कि अधिक मास चल रहा है, चाहे हम पुरुषोत्तम महीना भी कहो जाए कि ठाकुर जी यहाँ साक्षात रूप में पुरुषोत्तम महीना में धरती पर रह में और दर्शन रह में हैं, तो पुरुषोत्तम महीना में पूरे वर्ष भर के जो त्यौहार हैं वह को भी आनंद हम पुरुषोत्तम मास के रूप में ले में हैं, और आज तो विशेष तौर से पूनो है और परिक्रमा को आनंद भी लिया जा रहा है, तो आनंद लें जा अधिक मास लोक गीत को।

भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं मेघ श्याम के स्वर में जा लोक गीत को, और जब परिक्रमा देवे आए तो फिर मन करे कि चलो जल्दी से वृंदावन को भी आनंद ले लें।

भैया अभी आनंद ले रहे ऋषि शर्मा के सर में जा लोकगीत को, चलो मन श्री वृंदावन धाम। और जब वृंदावन धाम आए जामे तो ऐसा लगे कि पूरा मन जो है यहीं बस गया है।

भैयाओ आप आनंद ले रहे पंडित राम स्वरूप शर्मा के सर में जालू गीत को तेरी चितवन में चित फूलौरी जय गीत के साथ हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम अब संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था जय संतोषी माता। संध्या वंदन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम लीजिए सुनिए पंडित राकेश कुमार शास्त्री को।
1: बोलो श्री दाऊ जी महाराज की जय।

गिरिराज में आज है दान की घाटी। तुम्हें अपने घर सोनी किसी तो नंद को लाला बैठो अथाई में फिर की मुख मोर हंसी तो जे संकी सहेल ने सो सो लगाई। मेरी सासों ने गारी दई दिशों और नंद के फंद रचे हैं बनाई

ही सोहन ओ जे काली कलिंद्री तट खेलन आए खेलत गेंद गिरी देह में जब काले से नांग को जाए जगाए काले को नाथ लियो छिन में ओ काले के शीश पे नित्य कराए गोविंद यो प्रभु सो वखानत कार्य को नाथ के नाथ कहाए लाल ही मोहन लाल ही सोहन लाल ही लाल के मुख में बीरा लाल बने कट कांचन लाल की और लाल के शीश पे लाल।

हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो कंद सी मीठी हंसी हंस के, रसगुल्ला सी बांसुरी श्याम बजाई। जब खाजा सी आई विशाखा सखी, मुरली लई छीन लता में छिपाई। आए गई हैं सभी सखी धाय, उड़ाए हंसी की खीर सी खाई। जब लड्डू से मोहन रूठ गए, तो जलेबी सी राधा मना बन आई। जलेबी सी राधा मना बन आई। तो किसमिस सी मीठी हंसी हंसुके, जब काजू

इलायची सी राधे मना वन आई, इलायची सी राधे मना वन आई। एक बार अयोध्या और दो बार द्वारिका जाओ, तो तीन बार जाकर

चित्रकूट पांच बार पंचवटी तो नौ बार जा करके नासिक है आओगे, सौ बार सरस्वती हजार बार हरिद्वार और बार बार जा

गोकुल नगरिया में शोर मचो जब रोवत आई जसोदासी मैया, रोवत आई जसोदासी मैया। अंगई अंग जड़ा उजड़े और शीश

0: ना सको। झांके झरोकन में बांके बिहारी, झांके झरोकन में बांके बिहारी। दाऊ जी महाराज की जय।
1: श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। जित जाऊं तित आड़ ही आवे, बिना बुलाए मूसों बोले। यह है प्रीत की बात। आप सुन रहे हैं ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे हैं राकेश कुमार शास्त्री। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे।
3: फिर से
6: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार, कहा देश के धरोहर

0: फसलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा।

0: कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
1: जी बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
0: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना
0: जुड़े। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति CMO के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का CMO बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का CMO बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर GP गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
3: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
0: वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। RCB ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद

0: बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
1: और ये मेरी बुढ़िया के नाम।
2: पर दादी, आपके नाम?
3: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो। क्या
3: RBI कहता है?
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम आकाशवाणी की
6: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्याम सुहानी। हमें बहुत से आपके संदेश मिले हैं। बरवट बकाल बुलडाड़ा से नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय और इनके परिवारीजन। शाहूनगर यमतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, बेबी, प्रियांशी और रोशनी। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश, प्रमिला बंछोर, ग्राम पंचायत वठेना, पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। भाई नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत बिटिया, चुलबुल रानी, जय और बीरू मधुबनी बिहार से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिद्दा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीना कुमारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री। राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे। जिला खाऊगांव महाराष्ट्र से तहसील जलगांव जामोद, असल गांव बाजार। ये संदेश हमें मिले हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमनिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी बेदेही, कुमारी अकिता। अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जैनमती केवट, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डाबर। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

रोटी कपड़ा और मकान, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर की। बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरमा शर्मा, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब करवा से

रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और इनके परिवारीजन। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागुड़े, योगिता कुमारी प्रियाली, पार्स और इनका परिवार। अशोक कुमार कुमार, प्रमिला कुमार, चीनू, दीपक और अनुश्री। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई, छत्तीसगढ़ नगर, छत्तीसगढ़ से। सिद्धेश्वर नगर यमदमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, पूजा, श्रव्या। साधुल शहर राजस्थान से राजकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। बावरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती। चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन। गांव हेपरसोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नौरीन यासना और मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। बेरडी मध्य प्रदेश से हुकम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनया। हैप्पी सयानी, मिसेस सुनीता सयानी, रामगढ़ कैंट, झारखंड से। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदन कुमार, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू। पटेल नगर मलूट से आदर्श नगर मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मेडी, सौरभ, सायना और निवान शर्मा। विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन। गांव खोकरा वाली श्री गंगानगर से। प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि और कृष्णा घोड़के। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे कुछ कुछ होता है, इस फिल्म में उदित नारायण और साथियों को। अब हमें जो संदेश मिला है एम फारूक शेख, शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान, गणेशपुर गंजडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडव कुमार, कुमार गली कोलगांव से। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षम सेन। हिंदू राज रेडियो श्रोता संघ तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से मंडू लोहार, पोपलघट, चंद्रकला और देवीदास। व्हाइट फील्ड बेंगलोर से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण और संस्कृति पौरुष। थाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण वाठे, संदीप वाठे और अमूल्य वाठे। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रॉजी पर्ल और विलिस। एवरग्रीन रेडियो श्रद्धा संघ पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और तुलसी मस्कीन। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

नितिन मुकेश, किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था क्रांति। इस गीत के साथ ही आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आप सुन रहे थे उदित नारायण और राधा को। फिल्म का नाम था क्योंकि। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

संवेश्वरों में आप सुन रहे थे देशकाल। ये कार्यक्रम संपन्न होता है आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं निकाह फिल्म के कुछ गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर और सलमा आगा को।

आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर को, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं निकाह फिल्म कुछ गीत। आइए आप सुनते हैं सलमा आगा को।

0: आप सुन रहे थे सलमा आगा को। इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने निकाह फिल्म के कुछ गीत सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 8:45 होने वाले हैं, अगला कार्यक्रम दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल

0: مقابلہ جاری. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया. श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की. ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है.
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं. अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं. साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है. साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है. सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं. जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास. इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है.
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया.
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे. श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे. उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया. सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प. ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे. धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा. आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया. लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी.
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे.
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई. करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था. मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की. इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे. गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं. इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है. उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है.
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ. इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया. इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे. गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए. मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की. प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए. प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है. देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है. बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था. सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित

0: बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक

0: आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, हाई वोल्ट

अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था साजन। और आइए अब सुनते हैं फिल्म किस्मत का ये गीत, आवाजें हैं सुनिधि चौहान की।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था सागर। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 होने वाले हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.
2: हर

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय

0: स्वयं दे रही हैं।
1: जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो नाम है कनीस फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
2: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, छोड़ दे लगाना, छोड़ दे लगाना राधा।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी। साथ लो, साथ लो।
2: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
1: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
1: जैसा कि आप सब जानते हैं मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे, वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया कैसा हुआ, और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली

0: मछली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थीं।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे, और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: फैशन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओ, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: बांसुरी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।
2: बोल कहीं बोल यहाँ तो न बोल श्यामा,

संस्कृति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण, जीवन के बाने में आने वाला मरण।

संस्कृति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण,

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंद

0: अंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु यर्रैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री वीएन बालचंदर is a renowned Dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchirai T.G. Muthukumara Swami Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yeraiya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. Ye rachna T. Singarachari ki hai jo raag Vasant aur Adi Taal mein nibaddh hai.
1: Sri Yeraiya begins his saxophone recital with Ninnu Kori Yunannura, a composition of T. Singarachari in Rag Vasanta, set to Adi Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर पुयर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सुरजानंद इन राग कीरवाणी, सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashvani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा।

0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided.